क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे। मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा। इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूं मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना। और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो, तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है? जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से। किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है, लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण के आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है।

एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में, जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते थे। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रजम, मैं लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा, अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा, उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया, पर यहां कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं था।

श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानूं क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते हैं राधा का प्रेम, राधा का प्रेम, कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा। राधा जैसा हृदय, राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण

Eh sì, Shirani. श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम की। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटे। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है

राधा नाम से श्री कृष्ण को, वही प्रेम हमें भी जिस दिन उस राधा नाम से हो गया कि उस राधा नाम के बिना

दिन होगा, वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय, हमारा मन उन श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से गढ़ा है, बना है। प्रेम शब्द की सार्थकता जहां जिनके चरणों में होती है।

कोई नहीं कर सकता। किसी में इतनी हैसियत ही नहीं है कि उस प्रेम की परिभाषा, उसकी

प्रेम की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है, राधा राधा है वो, भक्त नहीं है वो, साक्षात कृष्ण की इष्ट है। मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम्य है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई। लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी, कैसे समा सकती हूं। लेकिन ये जो भक्त आते हैं इस दुनिया में, ये भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान भेजते हैं इनको कि दुनिया को दिखाओ मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए। और मीरा भी उन्हीं में से एक थी, और वो जहां से आई थी वही समा गई, कृष्ण से आई थी और कृष्ण में समा गई। मौत भी स्पर्श नहीं कर पाई है उसका। भक्ति को मौत कभी मार नहीं सकती है, काल कभी मार नहीं सकता है। इसलिए मीरा मीरा है, राधा राधा है, और ब्रज की गोपियां उनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, ना हम राधा बन सकते हैं, राधा बनना तो कोई मूर्खता है सोचना भी। भक्त कहते हैं हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए यही जीवन की धन्यता है। ना हम मीरा बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाए।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: इमोशनल डिपेंडेंस वर्सेस इमोशनल इंडिपेंडेंसी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे रिलेशनशिप डिसीजंस और मेंटल पीस को डीपली अफेक्ट करता है। कब किसी का सपोर्ट जरूरत बन जाता है और कब वो इमोशनल डिपेंडेंसी में बदल जाता है, आज हम इसी डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बी के सुधा जी, जो कि एक साइको न्यूरोथेरेपिस्ट है और इनका इस फील्ड में 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बी के प्रिया जी, वेलकम मैम।
1: शांति, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
0: ओके प्रिया जी, आज के समय में हम इमोशनल सपोर्ट के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं
1: जी।
0: क्या ये नेचुरल है या कहीं ना कहीं हम अपनी इनर पावर भूल रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी?
2: नेचुरल किसी के ऊपर डिपेंड होना ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी का डिपेंडेंसी आप एनिमल्स में भी अगर आप देखते हो तो कोई भी किसी पर भी इस तरीके से इमोशनली डिपेंड नहीं होता है
0: जी।
2: ऑल आर स्ट्रेंथ
0: जी,
2: और हैविंग देयर ओन स्ट्रेंथ। तो इंसानों को भी परमात्मा ने, हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे जितनी जो इमोशनली फिजिकली मेंटली और फाइनेंशियली सोशली हम जितने स्ट्रांग रहे हैं उतना कोई भी इस पूरी कायनात में नहीं रहा है
0: जी।
2: तो आज अगर हम डिपेंड हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कहा कि हम अंदर से इमोशनली बहुत वीक हो रहे हैं
0: जी।
2: इनफैक्ट बिल्कुल ही जीरो होते चले जा रहे हैं, जो आज का हम सर्कमस्टांसेस या जो भी हम देखते हैं हालात, खास जो यंगस्टर्स हैं जिनको हम जेंजी कहते हैं, स्पेशली हमने उनमें देखा है कि उनको बहुत ही ज्यादा इमोशनली वो वीक है
0: जी।
2: वो बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं।
0: हाँ जी।
2: कोई भी बात होती है तो वो पहले, सबसे पहले अपनी ईगो लेवल को आगे ले आते हैं, जो कि उनको नहीं पता चलता, दे डोंट फील इट एज अ ईगो, लेकिन उनको बस हर्ट हो जाता है। और ये बहुत बड़ा एक सत्य है कि हर्टिंग इज द मेन एलिमेंट ऑफ ईगो ओनली।
0: एग्जैक्टली।
2: अगर मुझे चोट लग रही है अंदर तो वो ईगो एक सबसे बड़ा पहला कारण होता है
0: जी।
2: किसी ने मजाक किया, मुझे वो बुरा लग गया, मैंने भी उसके साथ ऐसा मजाक कर दिया ताकि उसको बुरा लगे, तो मैं क्या कर रही हूँ, बदला ले रही हूँ
0: जी।
2: तो ये नेचर मेरा बढ़ता चला जा रहा है कि मुझे चोट लगी है तो आपको भी मैं एहसास दिलाऊं कि चोट क्या होता है।
0: बिल्कुल।
2: एक है कि सामने वाला व्यक्ति ही एक तरह डंब है तो हम उसे एहसास दिला रहे हैं, लेकिन एक है कि मेरे अंदर सहन करने की क्षमता खत्म है, मेरे अंदर उसको समाने की क्षमता खत्म है, तो मैं उसको एहसास दिला रही हूँ
0: जी।
2: तो यानी मेरे अंदर कमी आ रही है तभी मैं बाहर रिएक्ट कर रही हूँ या बाहर डिपेंड हो रही हूँ
0: जी।
2: तो आज मेरी डिपेंडेंसी हर पॉइंट पे आती है, हर पॉइंट पे। अगर मैं हंस रही हूँ तो डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने आप से खुश रहना भूल चुकी हूँ।
0: बिल्कुल।
2: आज अगर हम चार लोग बिठाते हैं हॉल में और उन्हें कहें कि चुप रहना है तो वो चुप रह कर के भी चुप नहीं है।
0: बिल्कुल।
2: वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन अंदर खलबली है
0: जी।
2: अगर आपको भी 2 मिनट हम कहीं बिठाते हैं, कहीं कोई इंसान को बिठाते हैं और उन्हें कहें कि बस आपको खाली बैठना है,
0: बिल्कुल
2: वो नहीं बैठ सकते। उन्हें अगर मोबाइल दे दें तो वो पूरे दिन बैठ सकते हैं। इसका मतलब एक इंसान अपने से बात करने में आज असमर्थ है, तभी तो वो अपने साथ नहीं बैठना चाह रहा। खाली बैठना यानी किसके साथ बैठे हो आप
0: जी?
2: आप अपने साथ बैठे हो, लेकिन आज कोई इंसान इस रीति से खाली नहीं होना चाहता
0: जी।
2: या उन्हें कोई नेचर में लेकर जाए, एनिमल्स के बीच ले जाए, लाफ्टर चैलेंज में ले जाए, या किसी गेम में ले जाए, मोबाइल दे दे, लोगों के बीच हो, पार्टी हो, लेकिन खाली नहीं बैठ सकते। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मैं अपनी अंदर की पावर को खोता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को ही नहीं जानता हूँ। और जब मैं अपने आप के बारे में अध्ययन शुरू करूंगा, अपने आप को टाइम दूंगा, अपने आप से बात करना स्टार्ट करूंगा, तो मेरा ये इमोशनल जो पावर है, स्ट्रेंथ है, ये बढ़ना स्टार्ट होता है।
0: बिल्कुल सही बात।
2: और जब मैं अंदर से भरपूर होऊंगा तो मेरी बाहर की जो डिपेंडेंसी है वो नेचुरली एंड ऑब्वियसली कम होती जाएगी। और एक दिन लोगों को मैं साथ दे पाऊंगा, सहारा दे पाऊंगा, बजाय उनके ऊपर डिपेंड होने के।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

में पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 FM की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके सुधा जी और बीके प्रिया जी। मेरा अगला सवाल सुधा जी आपसे है कि बीके के पर्सपेक्टिव से इमोशनल डिपेंडेंस और इमोशनल इंडिपेंडेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
1: जैसे ये शब्द आया है इमोशनल डिपेंडेंस और इमोशनल इंडिपेंडेंस, तो पहले हम इमोशन को अगर समझ लें तो हमें क्लियर होगा। एक्चुअली इमोशंस में वो एनर्जी होती है जो हमें मोशन में लाती है।
0: बिल्कुल।
1: हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो अगर उसमें जब तक हम इमोशन नहीं फील करते हम नहीं करते। हमें जैसे पेरेंट्स कहते हैं कर लो, लेकिन जब तक हम अंदर से दिल से उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें करना चाहिए, तब तक हम अपनी पूरी ताकत उसके अंदर नहीं लगाते। अब किसी भी कार्य के लिए हम जो ऊर्जा लगा रहे हैं उसे एक्चुअली इमोशन कहते हैं, लेकिन लोगों ने इमोशन को ना लव से कहीं जोड़ दिया है, प्रेम से जोड़ दिया। वो सोचते हैं कि अगर किसी इंसान को किसी इंसान के प्रति अगर डिपेंडेंसी है तो इमोशनल डिपेंडेंसी है। ये डिपेंडेंसी केवल व्यक्ति के प्रति ही नहीं होती, किसी भी चीज़ के लिए। आजकल जैसे बताया सिस्टर प्रिया ने कि फोन के प्रति डिपेंडेंट है, किसी को ये है कि मुझे उससे अच्छी कार ही ले दी और वो इतना ज़्यादा जुनून में आ चुका है कि उसे उससे ले उस कार के प्रति इतना इमोशन है। तो हम इमोशनली डिपेंड हैं जब हम ये चाहते हैं कि बाहर से कोई चीज़ मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, और हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं जो हम बाहर से किसी भी प्रतिक्रिया के बिना ही खुश हैं। कोई हमारी तारीफ कर रहा है नहीं कर रहा है, हम अपने में इतना सेल्फ सफिशिएंट हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो जो एनर्जी इन मोशन है वो हमें बाहर की ओर लेके जा रही है, जबकि उसे अंदर से हमें फुलफिल करना था और हमने ही एक्चुअली उसे बाहर जाने दिया है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को हमने ना बाहर से जोड़ लिया है, दूसरे हमें तारीफ कर दे तो हम खुश हैं वरना हम नहीं है। तो इमोशनल डिपेंडेंसी तब खत्म हो सकती है जब अपने आप को हम अच्छे से जान पाएंगे। अपने आप को जानने का मतलब अपनी ऊर्जा को हम बाहर बहने से रोकते हुए अंदर जब लेकर आएंगे।
0: जी जी बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
1: अरे आगे भी बोलना।
0: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके प्रिया जी और बीके सुधा जी। मेरा अगला सवाल आप दोनों से ये है कि बहुत बार हम इमोशनल डिपेंडेंस को प्यार समझ लेते हैं, तो हम कैसे पहचाने कि ये प्यार है या ये अटैचमेंट है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे पहले भी कहा था कि हम इमोशनली किसी पर डिपेंड होते तो उसे हम प्यार समझ लेते हैं।
0: जी,
1: प्रश्न पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ, बहुत अच्छा चुना है आपने। जब हम किसी व्यक्ति को ये महसूस करते हैं कि उसके बिना हम नहीं रह सकते, मैं फिर से कह रही हूँ केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वस्तु विशेष के लिए भी है, अगर वो चीज सामने से हट जाती है और हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, तो हम डिपेंड थे। उसके हिल जाने के बाद भी अगर हम अंदर से अपने आप को वीक फील नहीं कर रहे तो हम डिपेंड नहीं है। तो प्यार वास्तव में ना देने की चीज है। लव इज द ओनली डोनर थिंग, वो देने वाली ही चीज है, लेकिन लोगों ने उसे रिसीविंग बना लिया है। हर कोई प्यार का भिखारी है, तुम मुझे मुझसे प्यार से बोलो, तुम मुझसे प्यार से चलो, बाहर से मांगा जा रहा है, जबकि कुदरत ने ये डिफॉल्ट कर भेजा हुआ था। हम अपने सत्य को भूल गए, इस वजह से हम बाहर से मांग रहे हैं। तो इमोशनल डिपेंडेंसी को जो प्यार समझ लेते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। इमोशनल डिपेंडेंसी का मतलब ये कि आप अपने इमोशंस को पहचान कर उनके बल पर किसी के प्यार को, बल्कि मैं तो कहूँगी मांगे नहीं, देने में विश्वास करें।
0: बिल्कुल। प्रिया जी आप क्या कहेंगी?
2: जी बिल्कुल, जैसा सुधा जी ने कहा, आई एग्री विद हर। लेकिन और भी जो बातें हैं कि जैसे प्यार जहाँ है वहाँ हम बांधते नहीं है, जबकि अटैचमेंट में बंधते भी हैं और उससे ज्यादा कहीं बांधते भी हैं।
0: बिल्कुल।
2: और प्यार में एक खुल्लम खुल्ला है, खुल्लम खुल्ला माना ऐसा कोई बंधन नहीं फील होता, वहाँ ग्रोथ फील होती है कि मैं भी बढ़ रही हूँ और सामने वाला भी बढ़ रहा है।
0: जी।
2: जबकि अटैचमेंट में बंधन है, कहीं ना कहीं वो चीज एक ईगो का भी बीच में रास्ता आ जाता है, वो ढूंढता है किसी और के साथ तो कहीं वो व्यक्ति ना जुड़ गया हो, या अगर किसी चीज से प्यार है तो ये चीज कहीं और किसी के पास ना चली जाए। अगर मोबाइल से बहुत अटैचमेंट है तो उसे कोई हाथ लगा ले तो हमें दिक्कत है।
0: जी,
2: तरह से ये क्लियर हो जाता है कि प्यार है या अटैचमेंट है। मैं किसी व्यक्ति से अटैच्ड हूं तो वो अगर मेरे से ज्यादा किसी और को समय देता है तो मुझे क्लियर हो सकता है कि ये अटैचमेंट है, कि मुझे दिक्कत हो रही है। फिर जहां प्यार होता है, जैसे मैंने कहा, वहां ग्रोथ है, वहां कनेक्टिविटी रहती है, वहां बराबरी रहती है। और जबकि अटैचमेंट में हमेशा ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ बजाय आपके, मैं आपकी ज्यादा केयर करती हूँ बजाय आपके, मैं आपके लिए ज्यादा करती हूँ बजाय आपके। जबकि प्यार में ये सब चीजें नहीं होती है। एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उसको कैलकुलेट करके ऑलवेज नहीं देती है। जबकि वहां पर अगर एक दोस्ताना बिहेवियर में ये चीज आती है तो वो दोस्ती फिर एंड के कगार पे पहुंच जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है।
2: तो अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं अटैच्ड हूँ, और अगर मैं कैलकुलेशन में नहीं हूँ तो ये प्यार है।
0: जी बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: जॉनी जॉनी,
1: यस पापा।
0: बाइक चलाना है?
1: यस पापा।
0: हेलमेट पहनना है?
1: ओके पापा।
0: हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे?
1: नो पापा।
0: यू आर वेरी गुड बच्चा। हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
4: सुन भाई सुरेंद्र।
5: हाँ भाई तुरेंद्र।
4: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
5: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, घर का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके प्रिया जी और बीके सुधा जी। प्रिया जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कैसे हम अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रांग बना लें कि हम किसी पर डिपेंड ना फील करें।
1: इसके लिए जैसे कि पहले ही प्रश्न में था कि पहले मुझे अपने आप को इतना स्ट्रांग अगर बनाना है तो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी खुद का स्वॉट एनालिसिस कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो हमारे थ्रेट्स क्या है। ये सारी चीजें जब मैं अपनी कैलकुलेट कर लेती हूँ तो मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ
0: जी।
1: और अगर मुझे अपने आप को वाकई में आगे बढ़ाना है तो मुझे अपने को टाइम देना है और अपने को देखना है। अगर मुझे कोई उंगली उठाकर कह देता है कि आप इसमें वीक हैं
0: जी
1: और मैं रिएक्ट कर देती हूँ तो इसका मतलब मैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाना चाह रही, सिर्फ बचाना चाह रही
0: जी।
1: और वाकई में मुझे अपने आप को बचाना नहीं है, मुझे अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि लोगों के छोटे पत्थरों से मुझे कोई फर्क ना पड़े।
0: क्या बात है,
1: मेरे किले पे उनके पत्थरों से मुझे क्या फर्क पड़ सकता है अगर मैंने अपना किला बनाया है।
0: सही बात है।
1: तो इसलिए किला बनाएं। किला बनाने के लिए अपने आप को इंटरनली मजबूत करना होगा, जिसके लिए मेडिटेशन कैन बी अ वे टुवर्ड्स द स्ट्रेंथ। कि अगर जब आप मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी इंटरनल जो पावर्स है, जो हमें दिखती भी नहीं है पर है, तो हम उनको जान भी पाते हैं, पहचान पाते हैं और उनको इंक्रीज कर पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: फॉर एग्जाम्पल, हम सबके पास प्यार है
0: जी।
1: हम दूसरे को देखकर शुरू में नफरत किसी से भी नहीं करते
0: जी।
1: हम पहला जो हमारा नजर जाती है वो सबके लिए ही प्यार की, रहम की भावना की जाती है, लेकिन जब उसके अंदर की बातें जानते हैं तो हम चेंज हो जाते हैं।
0: सही बात है।
1: लेकिन मेरे लेवल, मेरे अंदर वो प्यार स्नेह जो है वो किस लेवल पे है, कितना परसेंटेज है, मुझे बढ़ाने की जरूरत है और कहां मुझे कम करने की जरूरत है, उस चीज को जानना, उस चीज की रिसर्च करना ही अपने आप को जानना है। तो जब हम इस चीज को डिग करते हैं, अपने आप की पूरी चीजों को समझ पाते हैं, तो हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और उसके लिए जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन हम जब करते हैं तो मुझे रियलाइज होता है कि वेयर आई वॉज रॉन्ग एंड वेयर आई वॉज राइट। तो मुझे जहाँ रॉन्ग है मुझे अपने को चेंज करना है, और उस चेंजिंग पीरियड में अगर मुझे कोई पॉइंट आउट कर देता है तो मुझे अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी किला बना रही हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो अपना किला बनाएं और अपने किले को इतना शानदार बनाएं कि लोगों के बड़े पत्थरों से भी आपको कोई फर्क ना पड़े, तो आप सुरक्षित हैं। और उस पल पे जब आप बिल्कुल टॉप पे पहुंचे होंगे, यानी आपका किला बिल्कुल बन चुका होगा, तब आपको लोगों की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके प्रिया जी और बीके सुधा जी। सुधा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, लाइक लेट रिप्लाई देना, वो रूड बात कर रहा है या वो बात ही नहीं कर रहा है, तो इसको स्पिरिचुअली कैसे हैंडल कर सकते हैं?
1: एक्चुअली जैसे जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें एक एस्पेक्ट आता है इमोशनल हेल्थ
0: जी।
1: तो अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो हम सीधी तरह समझ सकते हैं कि वो इमोशनली बीमार है
0: जी।
1: और जब किसी चीज में, जैसे कहते हैं कि कैल्शियम की कमी से ये बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से ये बीमारी होती है, तो सेल्फ लव की कमी से ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। हम अपने को अपने प्रति प्रेम को नहीं समझते हैं, स्वयं को हम अपनी इतने ऊंचे नजरिए से नहीं देखते हैं, नहीं मान के वैसा चलते हैं, बस दूसरे हमें कैसे आंकते हैं उससे ही अपने आप को जज करते हैं। तो जब हमारी आंखें बाहर से हटकर अपने प्रति आ जाती हैं, हम अपने सेल्फ लव को बढ़ाते हैं, हम डिपेंडेंसी को खत्म करते जाते हैं, तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं
0: जी।
1: अब लोग डिस्टर्ब हैं बाहर से, भाई मेरी बात का अभी के अभी ही जवाब दो, मैं जो चाह रही हूँ वैसा का वैसा ही करो, तो इसका सीधा सा मतलब है आपको अपने खुद से प्यार तब होगा जब आप दूसरों को कंट्रोल करोगे। प्रेम कंट्रोल नहीं सिखाता, और ये जो नाराजगी है वो इसीलिए कि अपने आप से एक सवाल है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो अगर कंट्रोल बाहर कर रहे हैं तो निश्चित ये सारे लक्षण आएंगे। हमें कंट्रोल अपने पर करना है, अपनी भावनाओं पर करना है कि वो बाहर न ढूंढें, वो अपने जो मजबूती है उसको अंदर से ही पैदा करें। तो जब ये बीमारी जो सेल्फ लव की है, अपने को हम भरपूर करते जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे जो लक्षण आप बता रहे हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है।

0: झूठ बोलते रहो। हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
0: बाय।
1: सुनो तो कहाँ चली।
0: बाय।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सोचा वरना हंसता रह जाएगा।
2: कौन है?
3: तुम्बाड़े कहानी जो सिर्फ डर नहीं, लालच का असली चेहरा दिखाती है। बारिश से भरा एक हॉरर फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें एक खजाना छुपा है, पर उसके साथ एक शराब भी। विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ की पुराने हवेली के खजाने का राज जानता है।
4: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
3: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
4: डरा नहीं रहा हूँ, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ।
3: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है। सोचा वरना

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जेकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था। पर उसके अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन एक बारिश भरी रात में उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी, राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: भुला देना मुझे, अलविदा।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।
1: फिर

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल में दम।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका। Hey, good morning, ladies and gentlemen. मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM पर कुछ हटके सीरीज। और जैसा कि आपको पता है, कुछ हटके सीरीज में हर बार एक नई कहानी एक नई स्टोरी के साथ में आ जाती हूँ। कुछ ऐसी कहानियाँ जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, पर उनकी आवाज उनकी कहानी आप तक नहीं पहुंची है, तो उसका जिम्मा उठाया है मोनिका ने और जुड़ गई है आपके साथ रेडियो महारानी 89.6 FM पर, जिसकी आवाज आपके दिलों तक पहुंचती है। पर अभी हाल फिलहाल में मुझे एक कमेंट आया कि जो कहानी आप लेती हैं उसमें से ऑलमोस्ट कहानियां मुझे पता होती हैं, तो वो भाई बहुत ही अच्छी बात है। और इसी बात से मेरी माइंड में ना एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना मैं आपको कुछ हिंट्स बताऊं कि आज की हमारी स्टोरी किसकी है और आपको आंसर करना है कि वो महिला या वो इंसान कौन है। तो मैं सबसे पहले यही आपको खुलासा कर देती हूँ कि आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक फीमेल की है। वो कोलकाता में जन्मी 1943 में और वो एक सोशल वर्कर हैं। 2018 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और साथ ही साथ वो आज बहुत सारे लोगों को जिंदगियां दे रही हैं। तो अगर आपने हमारे इस हिंट को समझ लिया होगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए आंसर करना। पर इस चैलेंज का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करना है, चाहे वो गूगल हो, इंस्टा हो या यूट्यूब या फिर चैट जीपीटी। आप किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप बहुत ही ऑनेस्टी से इसका आंसर करिएगा। तो जल्दी से फोन उठाइए और डायल कर दीजिए 9654896896 और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, बट बहुत ही ऑनेस्टी के साथ। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक सुनते रहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: बन गए कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल में दम।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका। वेलकम बैक, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक चैलेंज दिया था कि आपको बताना है कि आज की हमारी जो कहानी है वो किसकी है। मैंने आपको हिंट्स दिए थे, 1943 में ये बॉर्न है कोलकाता में, 2018 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, ये एक सोशल वर्कर है। बट इतनी आश्चर्य की बात है कि मुझे कोई कॉल नहीं आया और आज मुझे पहली बार खुशी हो रही है क्योंकि मुझे दिल में तसल्ली सी हो रही है कि मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है कुछ हटके सीरीज, वो लोगों के दिलों तक उन नामों को पहुंचा पा रही है जो उन तक नहीं पहुंचे हैं। कॉल नहीं आया इट मींस आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आज किस कहानी की बात होने वाली है और इनका नाम आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 1943 में चलिए चलते हैं, जब इनका जन्म हुआ था कोलकाता में, पर पहले विवाह बहुत जल्दी हो जाया करता था इसलिए 12 साल की उम्र में इनकी भी शादी कर दी गई। इनके पति जो हैं वो सब्जियों के विक्रेता थे, सब्जियां बेचा करते थे और हंसी खुशी से अपने परिवार को चला रहे थे। कुछ सालों के बाद इनके बच्चे भी हो गए, पर उन कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ जिसका असर तब हुआ जब ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और इन्हें अचानक से बहुत तेज बुखार आया। गांव में वैद्य हुआ करते थे उस टाइम पर, तब ये गई दौड़कर और वैद्य को बुला करके ले आई। घर में वैद्य आए, उन्होंने बताया कि आपके पति को बहुत तेज बुखार है, मैं इनको दवाई दे देता हूँ, अभी ये कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगे। पर इससे पहले कि ये दवाई लेते इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, तब वैद्य ने कहा कि इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। गांव में कोई अस्पताल नहीं था, पर इन्होंने अपने पति को एक वचन दिया कि बहुत जल्द हम अभी अस्पताल चलेंगे। और ये बाहर बैलगाड़ी को ढूंढने के लिए गई कि इन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाया जाए, पर जब तक ये वापस आई तब तक इनके पति का शरीर जो है बहुत ठंडा हो गया था। ये सारी चीजें देखकर एकदम बौखला गई सुभाषिनी मिस्त्री जी और उनके दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। और बहुत टाइम के बाद जब गांव वाले उनके घर में पहुंचे तब जाकर कहीं उनके दिल की चीख निकली और उनके दिल की आवाज बस यही निकल रही थी कि अगर अस्पताल होता पास में तो आज आप जिंदा होते। ये चीख उनके दिल में इतनी गहराई से बस गई कि उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि आगे से किसी भी इंसान की अस्पताल ना होने की वजह से जान ना जाए। आगे अपनी लाइफ में उन्होंने क्या किया, उनके बच्चे आज क्या कर रहे हैं, आज वो कितने साल की हैं और क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद सुन रही है कुछ हटके।

save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल में।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका। वेलकम बैक, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। और आज कुछ हटके सीरीज में कहानी चल रही है कोलकाता की सुभाषिनी मिस्त्री जी की। पति की अचानक मृत्यु के बाद सुभाषिनी मिस्त्री जी की पूरी जिंदगी बदल गई। एक तरफ छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी तो दूसरी तरफ गरीबी इतनी कि दो वक्त की रोटी जुटा पाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन उसी दर्द ने उनके अंदर एक बड़ा सपना जगा दिया। उन्होंने ठान लिया कि अब किसी गरीब इंसान की मौत सिर्फ इलाज न मिलने की वजह से नहीं होगी। सुभाषिनी जी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उनके इरादे बहुत मजबूत थे। उन्होंने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए, झाड़ू पोछा किया, ईंट ढोई, मजदूरी की और सब्जियां तक बेची। कई बार तो हालात ऐसे खराब हो गए कि अपने बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं खिला पाती थी, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे अजय की पढ़ाई को सबसे बड़ा सपना बना लिया और पैसे की कमी के कारण उन्होंने अपने दो बच्चों को अनाथालय तक भेज दिया ताकि वे पढ़ सकें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। उनका बेटा अजय पढ़ाई में बहुत अच्छा था। सुभाषिनी जी दिन रात मेहनत करती रहीं और अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना पूरा किया। बाद में अजय डॉक्टर बने और अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए उनके साथ खड़े हो गए। करीब 20 साल तक एक एक पैसा बचाने के बाद सुभाषिनी जी ने पश्चिम बंगाल के हंस पुक्कुर गांव में जमीन खरीदी। वहां उन्होंने एक छोटे से झोपड़े में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज शुरू किया। शुरुआत में डॉक्टर बिना फीस लिए मरीजों का इलाज करते थे। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ता गया और वही छोटा सा क्लिनिक आगे चलकर ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल बन गया। आज ये अस्पताल हजारों गरीब लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी बन चुका है और जिस महिला के पास कभी अपने पति का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, उसी महिला ने अपने संघर्ष और हिम्मत से गरीबों के लिए अस्पताल खड़ा कर दिया है। सच ही कहा जाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किलें भी रास्ता बन जाती हैं। आगे की कहानी में हम जरूर बढ़ेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर कुछ हटके सीरीज।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ.
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता.
0: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं. इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने, नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी. 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार की उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटकी सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। और आज कुछ हटकी सीरीज में कहानी चल रही है सुभाषिनी मिस्त्री जी की। सुभाषिनी मिस्त्री जी ने अपने जीवन में सिर्फ संघर्ष ही नहीं किया बल्कि अपने संघर्ष को लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का जरिया बना दिया। उनका बनाया ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल आज पश्चिम बंगाल के हंसपुरक इलाके में गरीबों के लिए सेवा का सबसे बड़ा साइन बन चुका है। बाद में उन्होंने सुंदरवन क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया ताकि दूर दराज के गरीब लोगों तक इलाज पहुंच सके। उनके बेटे डॉक्टर अजय मिस्त्री आज उसी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं और जिस माँ ने कभी मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया था आज वही बेटा लोगों की जिंदगी बचाकर अपनी माँ के सपने को आगे बढ़ा रहा है। और सुभाषिनी मिस्त्री जी के इस महान योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें गॉडफ्रे फिलिप्स ब्रेव अवार्ड एंड वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जैसे कई बड़े सम्मानों से भी नवाजा गया। साल 1943 में जन्मी सुभाषिनी मिस्त्री जी आज लगभग 83 इयर्स की हो चुकी हैं, लेकिन उनकी सोच और सेवा का जज्बा आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। एक गरीब अनपढ़ और संघर्षों से घिरी हुई महिला ने ये साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो वो अपनी तकदीर ही नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी भी बदल सकता है। तो अभी चलती हूँ मैं, मेरे जाने का वक्त हो गया है और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। और अगर आपके पास भी कुछ अच्छी कहानियाँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जो लोगों के दिलों तक पहुँचनी चाहिए अभी तक पहुँची नहीं है, तो आप हमारे नंबर 9654896896 पर शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी अगर कोई विश या फीलिंग है जो आप हमारे साथ या लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए और साथ ही साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम। बाय बाय।

0: हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: टाउन पार्क मॉल ऑफ फरीदाबाद और बटखल लेक की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
2: Nine point six FM. Good check.

0: गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी के रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला। पोषण की पाठशाला जहाँ हम बात करते हैं माँ और बच्चे की सेहत और पोषण के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी कई नई माओं के लिए ये जर्नी बेहद मुश्किल हो जाती है। कब शुरू करें ब्रेस्ट फीड देना, कैसे ब्रेस्ट फीड दे अपने बच्चे को, कितनी बार ब्रेस्ट फीड करें, ऐसे कई सवाल और डाउट अक्सर मन में आते हैं। आज के एपिसोड में हम ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े हर जरूरी पहलू पर बात करेंगे, ताकि हर माँ को मिले सही गाइडेंस और कॉन्फिडेंस। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृति, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल फरीदाबाद, जो आज हमें ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स, कॉमन प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस पर अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कृति आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, आज पोषण की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो सबसे पहले ये बताइए, ब्रेस्ट फीडिंग को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है, माँ और बच्चे दोनों के लिए? और अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग की, तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बेबी के लिए फायदेमंद है या माँ की हेल्थ पर भी इसका असर होता है?
1: थैंक यू मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर कृति, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में लगभग 3 साल से काम कर रही हूँ। हम वहाँ पे सुबह शाम ओपीडीज चलाते हैं और 24 घंटे इमरजेंसी में अवेलेबल रहते हैं, और हर तरीके की ऑब्जो गायने की सुविधा वहाँ पे अवेलेबल है। तो आज का क्वेश्चन कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इतना जरूरी है, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, इवन माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ब्रेस्ट और ओवरीज को आगे आने वाले कैंसर से भी बचाता है। प्लस ब्रेस्ट में फैट्स, प्रोटीन्स, सारे एंटीबॉडीज एडिक्वेट मात्रा में होते हैं जो बच्चे को चाहिए। शुरुआत में जो दूध आता है वो पतला आता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स और इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज चले जाएं, और एंड में फैट ज्यादा थिक हो जाता है, जिससे बच्चे का पेट जल्दी भरे, जो कि फॉर्मूला मिल्क में उतना बेटर प्रोपोर्शन में नहीं होता।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि आपने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, ये केवल बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि माँ के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट बच्चे के साथ साथ माँ को भी मिलते हैं। बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, उन्हें इन्फेक्शन से बचाना, ये सब फायदे ब्रेस्ट फीड के बाद मिलते हैं। तो जितने भी न्यू मॉम्स आज हमें

रही है। आज का एपिसोड खास आपके लिए है। इस एपिसोड से आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कुछ ही देर में। तब तक एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक जो है खास आपके लिए।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आज अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ हम बात कर रहे हैं आज ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग की, डिलीवरी के बाद पहले एक घंटे में ब्रेस्ट फीड करना क्यों इतना ज्यादा जरूरी होता है? साथ ही आज हमें ये भी बताइए कि क्लोस्ट्रम क्या होता है और कई लोग इसे वेस्ट क्यों कर देते हैं। अगर क्लोस्ट्रम न्यूबॉर्न बेबी को फीड ना कराया जाए तो कितना नुकसानदेह हो सकता है?
1: पहले घंटे में बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर आप इमीडिएटली लैच करते हो बच्चा लैच बहुत अच्छे से करता है, प्लस माँ और बच्चे की बॉन्ड बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश होती है और आगे ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर रहती है एंड सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट सही रहता है, आपका सप्लाई अच्छा रहता है। जरूरी नहीं कि पहली बार में ही जब आप लैच करो तो मिल्क बहुत अच्छे से आए, स्टार्टिंग में मिल्क थोड़ा कम ही आता है, बट जैसे जैसे बच्चा सक करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिससे बेटर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और लैचिंग होता है। कोलेस्ट्रम पहले 2 से 3 दिन का मिल्क जो होता है उसे बोलते हैं, ये गाढ़ा पीला होता है, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं और बहुत ज्यादा फैट एंड न्यूट्रिएंट रिच होता है। ये देखने में तो सब पीला गंदा लगता है तो इसलिए बहुत लोग इसे डिस्कार्ड करते हैं, बट ये आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, आगे आने वाले इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, तो इसे कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना है, बच्चे को जरूर पिलाना है, इससे बच्चे को कोई गैस कोई कब्जी कुछ नहीं होगी।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि डॉक्टर ने बताया क्लोस्ट्रम की अगर बात करें तो ये डिलीवरी के बाद पहले 2 से 3 दिन वाला मिल्क होता है जो कि एक न्यूबॉर्न के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे उन्हें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है क्लोस्ट्रम मिल्क की वजह से। इसलिए हमेशा डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि बेबी को फीड कराना बेहद जरूरी है सो दैट कि वो आगे आने वाली बीमारियों से लड़ सके बिना किसी परेशानी के। ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े और भी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: पोषण की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं रेडियो महारानी पर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, जहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात करें सी सेक्शन डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, साथ ही सही ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन कौन सी होती है ताकि माँ को दर्द भी ना हो और बेबी को सफिशियंट मिल्क मिल सके।
1: सिजेरियन के बाद जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है स्पेशली पहले एक दो दिन, वो ये होता है कि टांकों में बहुत दर्द होता है, प्लस सिजेरियन के 24 घंटे तक माँ को बैठने की अनुमति नहीं होती क्योंकि स्पाइनल हेडेक का रिस्क रहता है। तो इसमें आपको बच्चे को लेटा के ही फीड कराना है। आप फुटबॉल पोजीशन ले सकते हैं, साइड में करवट लेके बच्चे को पकड़ के फीड करा सकते हैं। और एक दिन बाद जब आपको बैठना अलाउड है तो पिलो जरूर यूज करें, स्पेशली डोनट शेप्ड ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज। उससे आपके स्टिचेस पे प्रेशर कम आएगा और फीड कराने में हेल्प होगी, लैचिंग अच्छी होगी तो बेबी फीड आराम से कर लेगा आपका।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, एंड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आजकल काउंसलिंग भी दी जाती है तो उस काउंसलिंग की भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया फुटबॉल पोजीशन, आप उस पोजीशन में बैठकर बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर ने बताया डोनट शेप पिलो लेकर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हेल्प करेंगी। ऐसी चीजों का ख्याल रखिए, इन चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में और ब्रेस्ट फीडिंग जैसी जर्नी को इजी बनाइए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल, जो आज हमें बता रही हैं ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी होता है, किस तरह से ब्रेस्ट फीड कराया जाए, कितना बेनिफिट हो सकता है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए ब्रेस्ट फीड करना। डॉक्टर, अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान निप्पल पेन या फिर क्रैक्स की, जो अक्सर एक न्यू मदर फेस करती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए? साथ ही अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कैसे पता लगाएं कि बेबी को इनफ मिल्क मिल रहा है या बच्चा अभी भूखा है?
1: अगर क्रैक्स हो जाते हैं, जो बहुत सारी महिलाओं को होते हैं, वो ज्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे ने अच्छे से लैच नहीं किया है, निप्पल उसके पूरे मुंह में नहीं है, तो बाइटिंग या स्ट्रेचिंग की वजह से हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल नहीं बंद करनी, आप कोई भी क्रीम, लेनोलिन क्रीम आती है वो लगा के ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इनफ ब्रेस्ट फीडिंग हमें ऐसे पता चलती है कि आपका बेबी 6 to 8 टाइम्स यूरिन कर रहा है अच्छे से, उसका वेट गिर नहीं रहा। आपके बच्चे का पैदा होने के बाद 10% वेट गिरता है, बट उसके बाद बढ़ना चाहिए। साथ ही बच्चे रोते नहीं है ब्रेस्ट फीड के बाद, कम से कम पेट भरा हुआ लगता है। अगर ब्रेस्ट फीड कराते ही आपका बच्चा क्रैंकी हो रहा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहीं फीडिंग अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजी अंशी आपके साथ और शो लेकर आई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। तो डॉक्टर, अब बात करते हैं कॉमन मिथ्स के बारे में। बहुत सी ऐसी मदर्स हैं जिन्हें लगता है कि उनका मिल्क प्रोडक्शन कम है, क्या ये सच होता है या सिर्फ एक मिथ है? साथ ही अगर बात करें फॉर्मूला मिल्क और मदर्स मिल्क में, क्या फर्क होता है इन दोनों में? और जितनी भी वर्किंग मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती, उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं?
1: ये बहुत ज्यादा कॉमन अनसर्टेनिटी रहती है माओ में कि हमें अच्छे से दूध नहीं बन रहा, बच्चा बार बार भूखा हो रहा है। ब्रेस्ट मिल्क बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है, उसके बाद बच्चे को 1.5 से 2 घंटे में फिर से भूख लग जाती है। फॉर्मूला मिल्क हैवी होता है तो जनरली काफी देर तक बच्चे को भूख नहीं लगती, 3 घंटे तक। इसलिए हमें लगता है कि बच्चा फॉर्मूला मिल्क पे अच्छे से पेट भर रहा है और ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं। बट ऐसा नहीं है। अगर आपका ब्रेस्ट हैवी रहता है एंड आप आराम से फीड करा पा रहे हैं हर 2 घंटे में, तो मिल्क सफिशिएंट है। प्लस जैसे मैंने पहले कहा कि अगर बेबी का वेट मॉनिटर कर रहे हैं और बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली 6 से 7 महीने ऑफ बेबी आप का बच्चा हर 2-3 घंटे में फीड करेगा ही करेगा। बच्चे क्योंकि बाहर आते हैं तो जनरली क्रैंकी रहते हैं, बहुत टाइम ये होता है कि बच्चा बार बार रो रहा है तो हमें लग रहा है पेट नहीं भर रहा, भले मिल्क प्रोडक्शन पूरा है। तो बच्चे के रोने पे हमेशा ना जाए, आप खुद देखिए कि क्या आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, वेट, डायपर चेंज, इन सब पे ध्यान दीजिए। फॉर्मूला मिल्क और मदर मिल्क में ये अंतर है, फॉर्मूला मिल्क में सिर्फ न्यूट्रिशन मिल रहा है आपको, मदर मिल्क में लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी आपको टीके लगे हैं या जो भी आज तक आपको इन्फेक्शन हुए हैं उसकी एंटीबॉडीज हैं आपके पास, जो माँ के दूध से बच्चे में जाती है और उस इन्फेक्शन को फाइट करने में मदद करती है। फॉर्मूला मिल्क में आपके बच्चे को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती, तो ब्रेस्ट मिल्क इज ऑलवेज बेटर देन फॉर्मूला मिल्क। अब वर्किंग मदर्स, आजकल हम सब काम करते हैं तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो मिक्स कर सकते हैं आप। यू कैन डू सम ब्रेस्ट फीडिंग एंड सम फॉर्मूला मिल्क, जिससे इम्यूनिटी भी जाए। फिर या तो आप पंप करके रख सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट मिल्क को बहुत स्पेसिफिक तरीके से प्रिजर्व किया जाता है एंड हीट भी आप काऊ के दूध की तरह उसे नहीं कर सकते। डायरेक्ट हीट ब्रेस्ट मिल्क को अगर हम करते हैं तो लाइव ऑर्गेनिज्म उसके मर जाते हैं, तो आपको हमेशा पानी गर्म करना है और उसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क को गर्म करना है इनडायरेक्ट हीट से। तो आप प्रिजर्व कर लीजिए अपना ब्रेस्ट मिल्क, आप मिक्स फीडिंग दे दीजिए। अगर दोनों पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ ऑफ अ वर्किंग मॉम इज बेटर।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि डॉक्टर ने बताया, ब्रेस्ट मिल्क इज बेटर देन फॉर्मूला मिल्क। अगर सिर्फ फॉर्मूला मिल्क की बात की जाए तो कहा गया है कि यहाँ पर बेबी को न्यूट्रिशन उतने नहीं मिलते जितने रिक्वायर्ड होते हैं। एंड जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि मदर मिल्क में लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके बच्चे को इम्यूनिटी देते हैं, आपके बच्चे को स्ट्रांग रखते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। जितने भी टीके, जितने भी वैक्सीन एक मदर को लगती है, वो सब मिलती है एक मदर मिल्क में बच्चे को। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ज्यादा कराएं, फॉर्मूला मिल्क पर डिपेंड ना रहे। और जितनी भी वर्किंग मदर है उन्हें गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने ये भी बताया है आज कि आप किस तरह से अपना ब्रेस्ट फीड प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सो दैट कि आपका बेबी जब भी भूखा हो उस मिल्क को कंज्यूम कर सके। इसी के साथ और भी सारे मिथ हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शानदार और सुरेख के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात करें मदर्स न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल की, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर को अपनी डाइट में किन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए? अगर एक न्यू मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो क्या इसका असर मिल्क सप्लाई में पड़ता है?
1: माँ का न्यूट्रिशन डायरेक्टली लिंक्ड होता है मिल्क प्रोडक्शन से, तो माँ का न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे घरों में ये होता है कि पहले 6 दिन माँ को कुछ नहीं दिया जाता, कम बस दाल का पानी, लाइट, जिससे बच्चे को दिक्कत ना हो, उससे मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। माँ को प्रॉपर कैल्शियम आयरन रिच खाना खाना जरूरी है, क्योंकि अगर कैल्शियम देना है बच्चे को तो माँ का इंटेक बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूर दें, प्रोटीन रिच होना चाहिए। अगर आप अंडे खाते तो अंडे, दूध, पनीर, ये मिथ है कि दूध टांके खराब करता है, दूध जरूरी है। हरी सब्जियां, सारे फ्रूट्स, फल सब दीजिए। मेंटल स्ट्रेस, नींद कम होना, सब मिल्क प्रोडक्शन इफेक्ट करता है। अगर आप रात को सोते नहीं हैं, आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन कम बनता है, जिससे दूध कम बनता है, तो मेंटल पीस ऑफ अ मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन की, डॉक्टर अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एनक्रोचमेंट, ब्लॉक डक या फिर मैस्टाइटिस जैसे इश्यूज में, साथ ही अगर बेबी लैच नहीं कर रहा हो तो मदर को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस स्टेज पर आकर एक लैक्टेशन एक्सपर्ट से मिलना बेहद जरूरी हो जाता है।
1: अगर आपके ब्रेस्ट में सूजन आ रही है, डक्ट बंद हो गई है, दर्द हो रहा है, लाल हो रहा है, तो तुरंत सिकाई करें, पहले गर्म फिर ठंडे की, उससे डक्ट्स खुलेंगी, और फिर ब्रेस्ट फीड कराएं। जिस ब्रेस्ट में सूजन है उससे ज्यादा ब्रेस्ट फीड कराना है, क्योंकि वो सूजन दूध के इकट्ठे होने से हो रही है। अगर उसे आप खाली कर दोगे तो सूजन ठीक हो जाएगी। अगर आप उसे नहीं निकालेंगे, ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगे, तो उसमें थोड़े टाइम में पस बन जाएगा और चीरा लगाने की भी जरूरत पड़ जाती है। सूजन में बहुत लोगों को लगता है कि हमें वहाँ से दूध नहीं पिलाना और दूध फेंक देना, ऐसा कुछ नहीं है, दूध ठीक है, जरूर पिलाएं उसमें से दूध और उसे खाली करें। अगर बच्चा लैच नहीं कर रहा तो आप उसे स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखिए। जब बच्चे की चमड़ी और आपकी चमड़ी मिलती है तो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है आप में और बच्चे में, और उसकी लैचिंग कैपेसिटी बेटर होती है। ध्यान दीजिए कि लैच अच्छे से कर रहा है या बच्चा या नहीं, अगर अच्छे से करेगा तो हो सकता है फिर आपको हेल्प हो। अब किस स्टेज पे आपको लैक्टेशन एक्सपर्ट से मिलना है, वो तब है अगर पस निकलने लग जाए आपके ब्रेस्ट से, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है जो सिकाई के बाद भी कम नहीं हो रहा, बच्चे ने दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया है और आपको बुखार आना शुरू हो गया है। इस केस में जरूर डॉक्टर को दिखाएं।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया है कि ब्रेस्ट फीडिंग आखिर होती क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है और मदर और बेबी को इससे क्या फायदे मिलते हैं, साथ ही डॉक्टर ने ये भी बताया है किस तरह की मिथ हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, और डॉक्टर ने टिप्स भी दिए हैं कि किन टिप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के दौरान। और अगर हम बात करें लैक्टेशन एक्सपर्ट से मिलने की, तो डॉक्टर ने बताया कि जब भी आपको ये लगे कि आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, आपका बेबी लैच नहीं कर रहा है, आपको पेन फील हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, आपको लग रहा है कि आपके का पेट नहीं भर रहा है, तो अगर इस तरह के डाउट आपके मन में आ रहे हैं तो प्लीज जाकर एक लैक्टेशन एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करें। इवन आप अपनी गायनी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको सही गाइडेंस देंगे, बस उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए एंड फिर देखिएगा कि ये जर्नी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में आपको पेशेंस से काम लेना है, हिम्मत से काम लेना है, और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। बाकी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए खास ट्रैक जो है आपके लिए।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आज अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात की जाए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की, तो पहले ये बताइए कि क्या मतलब होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, एंड साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक होनी चाहिए? और अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो कब से स्टार्ट करनी चाहिए? साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग बंद करते वक्त विनिंग क्या गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए?
1: एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पहले 6 महीने होती है। इसका मतलब है आप कोई पानी हनी कुछ भी नहीं देते। इंडियंस बहुत ज्यादा घुट्टी में बिलीव करते हैं या शहद चटाने में बिलीव करते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है। बच्चे में कोई इम्यूनिटी नहीं होती, वो पेट के अंदर था, उसको किसी भी एंटीजन का एक्सपोजर नहीं है। आप कुछ भी देंगे जो बाहर का है, उससे इन्फेक्शन रिएक्शन होने के बहुत चांस होते हैं। हनी में तो बल्कि एक बॉटुलिज्म टॉक्सिन होता है जो डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ब्रेस्ट फीड के अलावा 6 महीने तक आपको पानी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा इवन फॉर्मूला मिल्क में पानी मिलाया जाता है जो कि उबला हुआ होता है, और ब्रेस्ट फीड मिल्क जो होता है स्टार्टिंग का उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी होता है। तो कुछ नहीं देना पहले 6 महीने तक। उसके बाद आप धीरे धीरे सेमी सॉलिड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बनाना की प्यूरी, चावल का पानी थिक करके, दाल बिल्कुल पतली करके सूप की तरह, ये सब धीरे धीरे ऐड करिए। इसे हम वीनिंग बोलते हैं जो 6 महीने के बाद शुरू होती है। और अगर पॉसिबल है तो वीनिंग के साथ साथ 2 साल तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखिए।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शानदार सूर्य के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग की, तो ये बताइए की ब्रेस्ट फीडिंग का माँ के मेंटल हेल्थ और बॉन्डिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? साथ ही अगर एक न्यू मॉम ये गिल्ट फील करे की वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप?
1: हम ब्रेस्ट फीडिंग को एक माँ बनने के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। जब माँ अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती, तो बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे कौन से माँ हो जो दूध नहीं पिला पा रही, या फिर तुम अपने बच्चे को प्यार नहीं करती इसलिए दूध नहीं आ रहा। बट ये सच नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हॉर्मोन्स की वजह से होता है, बहुत बार दूध नहीं बनता। तो हमें उन माओं को शेम करने से बेटर है सपोर्ट करिए। वो माँ भी उतने ही मन से ब्रेस्ट फीड कराना चाहती है जितना आप चाहते हैं। इसलिए ब्रेस्ट फेड बेबी जरूरी नहीं है, फेड बेबी जरूरी है। नहीं आ रहा तो कोई नहीं, आजकल की साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ऑलमोस्ट सेम हम कंपोजिशन में दूध दे सकते हैं। पर एक चीज जो ध्यान रखनी है, गाय के दूध पे नहीं जाना है, आपको पाउडर फॉर्मूला मिल्क ही देना है। गाय के दूध में बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं है जो इनिशियल इयर्स में आपके बच्चे को चाहिए, तो फॉर्मूला मिल्क दीजिए। प्लस गाय का दूध एलर्जी वगैरह भी स्टार्टिंग में कर सकता है, तो वो आप एक साल बाद शुरू कर सकते हैं। तो हमेशा मदर्स को सपोर्ट करिए, क्योंकि हैप्पी मदर ही हैप्पी बेबी को लीड करेगी। थैंक यू
0: सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। एंड दोस्तों, उम्मीद है आज का एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल और रीअश्योरिंग रहा होगा। ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चे का पहला पोषण नहीं, बल्कि माँ और बच्चे के बीच एक गहरा रिश्ता भी बनाता है। और आज हमने जाना कि सही टेक्निक, पेशेंस और गाइडेंस के साथ ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को आसान बनाया जा सकता है। और आज इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रही डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अपने वैल्यूएबल गाइडेंस एंड सिंपल टिप्स हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और ढेर सारे टिप्स के साथ। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला है, अब क्या करें।
1: वेलकम टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंजली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ फिट है तो हिट है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हर साल गर्मी और मानसून के सीजन में तेजी से बढ़ने लगती है। जिस बीमारी में बुखार को नॉर्मल वायरल समझकर इग्नोर करना बहुत डेंजरस हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं डेंगू के बारे में। डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं, इस बीमारी के सीजन के दौरान कैसे करें अपने घर और फैमिली को सेफ, और साथ ही सोशल मीडिया पर चलने वाले मिथ्स में कितनी सच्चाई होती है, इन सभी इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है डॉक्टर राजीव चौधरी फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रेडियो महारानी के स्टूडियो में आपका। डॉक्टर, अगर बात की जाए पर्टिकुलर डेंगू की, तो डेंगू केसेस हर साल इतना कॉमनली क्यों स्प्रेड हो रहे हैं, स्पेशली अगर बात की जाए समर्स और मानसून की।
2: थैंक यू एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राजीव चौधरी, आई एम डायरेक्टर एंड हेड ऑफ यूनिट इन इंटरनल मेडिसिन इन सेक्टर 20 यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आज हम डेंगू के लिए बात कर रहे हैं। डेंगू बेसिकली मॉस्किटो के काटने से होता है, जो कि एडिस एजिप्टाई फीमेल मॉस्किटो है, जिसकी कारण डेंगू होता है। नॉर्मली ये मॉस्किटो वार्म सीजन के अंदर ज्यादा अच्छा ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है और ब्रीड करता है, और जहाँ पे पानी स्टैग्नेंट खड़ा हुआ है, जहाँ इकट्ठा साफ पानी है, वहाँ पे नॉर्मली ये ब्रीड करता है। और नॉर्मली गर्मियों में और जहाँ पे मानसून के टाइम पे, जहाँ बारिशों के टाइम पे हमारे जो पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पे साफ पानी पे नॉर्मली ये ब्रीड करता है, और यही नॉर्मली डेंगू फैलाता है। इसलिए हमारे नॉर्मली गर्मियों में और मानसून के टाइम पे आपको डेंगू के पेशेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है तो वो है अवेयरनेस, जो डेंगू से बचाव का सबसे बड़ा स्टेप है। सो माय डियर लिसनर्स, अपने आप को अवेयर रखिए इस बीमारी के दौरान, सो दैट कि अगर आपको ये बीमारी हुई भी है तो बहुत जल्दी आप रिकवर कर जाए, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूले। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंशी आपके साथ और शो चल रहा है फिट है तो हिट है। और आज हम बात कर रहे हैं डेंगू डे के बारे में, जहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजीव चौधरी। सो डॉक्टर, अगर डेंगू के शुरुआती लक्षणों की बात की जाए तो ऐसे कौन से सिम्टम हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और न ही कभी उन्हें नॉर्मल फीवर समझ कर साइड कर देना चाहिए? जिस सिम्टम को देखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
1: डेंगू के पेशेंट्स नॉर्मली या तो आपके पास बुखार जो कि तेज हो सकता है उसके साथ आते हैं, उसके साथ सिर में दर्द होना, हड्डियों में और मांसपेशियों में दर्द होना, आंखों के पीछे इसमें दर्द बड़ा कॉमन होता है, साथ में नौजिया या जी मचलाना इसमें रह सकता है, कई बार शरीर पे रैशेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है और डिहाइड्रेशन इज अ वेरी प्राइम सिम्टम जो इसमें रहता है। तो ये इसके प्राइमरी और इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जिनके साथ नॉर्मली इनिशियली पेशेंट प्रेजेंट करता है।
0: जी थैंक यू सो मच डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया छोटी छोटी प्रिकॉशंस हमारी फैमिली को डेंगू से सेफ रख सकते हैं। सो माय डियर लिसनर्स, हमेशा बेबी स्टेप्स लेना जरूरी है, ये चीज याद रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको फीवर है, 2-3 दिन से ज्यादा है और फीवर धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो प्लीज जाकर अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कीजिए। और ऐसे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स डॉक्टर ने बताए हैं जिनका ध्यान आप रख सकते हैं। तो डेंगू के दौरान अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: yes, yes. Say it again.
1: Yes, you are the best. You're the best. You're the best. You're the best.
2: सदा सुरक्षित रहो. A road safety campaign by Radio Maharani.
3: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन. लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट. राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट. इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान. बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा. और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय. और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो. याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है.
4: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
5: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा.
4: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा.
6: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान. किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी.
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी. लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं. मैं हूं एम्बुलेंस. हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है. कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं. इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं. दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं.
7: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें. रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी.

0: घर चला मैं।
1: फिट है तो हिट है शो लेकर फिर से लौट आई हूँ मैं। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ। और आज हम बात कर रहे हैं रेडियो महारानी पे डेंगू डे के बारे में, जहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजीव। सो डॉक्टर, डेंगू के दौरान बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं जो अक्सर हमारे सामने आते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो बहुत लोग प्लेटलेट्स को लेकर पैनिक हो जाते हैं। क्या सिर्फ प्लेट काउंट कम होना ही डेंजरस साइन होता है, या फिर ऐसे और भी साइन हैं जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए?
2: प्लेटलेट इज वन ऑफ द फाइंडिंग्स इन द डेंगू पेशेंट्स। ऑब्वियसली हम उसको अकेला क्राइटेरिया नहीं मान सकते जिससे कि पेशेंट की सीवियरिटी डिसाइड हो। यस, अगर प्लेटलेट किसी के 1 लाख से नीचे आ गए हैं, नॉर्मल फाइंडिंग इज 1.5 लाख से 4 लाख तक होते हैं, 4.5 तक। अगर किसी के 1 लाख से नीचे है तो ऑब्वियसली ही शुड कॉन्टेक्ट डॉक्टर। और इसके अलावा काफी सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि ग्रीवियस माने जाते हैं। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि पेट बहुत हाई ग्रेड फीवर हो, उल्टियां बहुत ज्यादा हो, अगर पेट में दर्द है पेशेंट को इस और कहीं से ब्लीडिंग आ रही है, चाहे वो गम्स में से या नोज में से या फिर स्टूल के रास्ते से अगर आ रही है, पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, अगर उसका शरीर का बिल्कुल ठंडा पड़ रहा है, पेरिफेरल उसकी बहुत कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो गई हैं और शरीर में पानी की कमी है और बहुत सारे रैशेज हैं, दीज आर सांस लेने में कठिनाई है, तो ये उसके ग्रीवियस या उसको ज्यादा खराब सिम्टम्स सीवियर सिम्टम्स में माना जाता है। अकेले प्लेटलेट के बेस पे आप नहीं कह सकते कि पेशेंट की सीवियरिटी को लेकर।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मिथ्स और फैक्ट्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है जो लिसनर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सो माय डियर लिसनर्स, कभी भी किसी मिथ के पीछे ना भागे। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी सिम्टम है तो जाकर अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, खुद अपने डॉक्टर ना बने। और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है फिट है तो हिट है, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं डेंगू डे के बारे में। अब बहुत सारी चीजें डॉक्टर से जान रहे हैं, तो डॉक्टर ये बताइए डेंगू से बचने के लिए घर और आसपास किन बेसिक प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए सो दैट कि हम इस बीमारी से आसानी से लड़ सके।
1: बेसिकली जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये ब्रीड जो करता है खड़े पानी में और साफ पानी में करता है, तो घर के अंदर जो हमारे कूलर्स हैं जहाँ पे हमारा पानी इकट्ठा हो रखा होता है, फिर हमारे गमले हैं उन ये जगहें या कहीं पे छत पे या कहीं पे जहाँ पे पानी की स्टैग्नेंट सोर्सेज हैं, वो हमें बड़े रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए। कहीं ऐसी जगह नहीं छोड़नी चाहिए जहाँ पानी पड़ा हो, तो वहाँ पे ब्रीडिंग की जगह है। इसके अलावा घर के आसपास बहुत सफाई रखनी चाहिए, नालियां हैं जो हमारे घर के आसपास उनको रेगुलर सफाई रहनी चाहिए, कहीं कूड़ा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी हमारे को लगता है गंदगी है हमें उसे क्लीन करना चाहिए, वो ब्रीडिंग सोर्स है। इसके अलावा एज अ पर्सन इन हाउस आपको अपने पूरे बाजू के कपड़े पहन के रहना चाहिए, और इसके अलावा आप मच्छरदानी यूज कर सकते हैं, जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो सोर्सेज है जिसमें मच्छरदानी एक है, आपके पास आज की डेट में पॉइंट प्रिंट्स या ट्यूब्स हैं जो आप लगा सकते हैं, क्रीम्स हैं लगाने की मॉस्किटो रिपेलेंट, और बेसिकली आप ये दीज आर द मेन थिंग्स जिसके है, और सोसाइटी में बेसिकली हमें सफाई ज्यादा रखनी चाहिए, और दीज आर द वेज जिससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं मॉस्किटो की ब्रीडिंग को।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड जैसे कि लिसनर्स अभी डॉक्टर ने बताया फीवर को इग्नोर कभी मत कीजिए, टाइम पर डॉक्टर की एडवाइस जरूर लीजिए, एंड कुछ टिप्स एंड आज डॉक्टर ने कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताए हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, और इस डेंगू जैसी बीमारी से आप बहुत आसानी से लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है जो आज आपको रेडियो महारानी के इस एपिसोड में मिल रही है। सो प्लीज आज का एपिसोड ध्यान से सुनिए, समझिए और साथ ही बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ? I love you यार।
3: Love you too।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे इंचली आपके साथ और शो चल रहा है फिट है तो हिट है, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डेंगू डे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजीव। तो डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पर बहुत सारे बिलीव्स हैं, बहुत सारे मिथ हैं, जैसे कि अगर पपीते के पत्ते का रस पिया जाए या फिर कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो आप डेंगू जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो प्लीज ये बताइए कितनी सच्चाई है इन मिथ्स में, सो कितनी सच्चाई है इन वायरल अपडेट्स में।
1: WHO जो पपीते के पत्तों का रस है, दैट इज, देयर इज नो रिकमेंडेशन फॉर दैट थिंग। ऑब्वियसली साइंटिफिकली ये पाया गया कि देयर इज समथिंग इनके पपीते के पत्तों में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं, बट इन माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये देखा गया कि इनके एक साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसमें वॉमिटिंग और डायरिया इज वेरी कॉमन विद दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस, और वो कई बार आपके पेशेंट को जो ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है वो डिहाइड्रेट कर सकता है। सो आई वोंट एंडोर्स इट, तो मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा।
0: किसी भी बीमारी के दौरान बहुत जरूरी होती है जानकारी, और उससे भी ज्यादा जरूरी होती है सही इंसान से मिलने वाली जानकारी। जैसे कि बीमारी की अगर बात कीजिए तो सबसे पहला सोर्स डॉक्टर होते हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए, स्पेशली उन वार्निंग साइन के बारे में जो हर किसी को पता होना चाहिए कि अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो किस तरह के वार्निंग साइन आपको सबसे पहले अपनी बॉडी में नजर आएंगे, सो दैट कि आप जान सके कि आपकी बॉडी के साथ, आपकी हेल्थ के साथ कुछ ठीक नहीं है, और जाकर तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आरजू इंचली आपके साथ और शो चल रहा है फिट है तो हिट है, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं डेंगू डे के बारे में। सो डॉक्टर, अगर बात की जाए डेंगू की, सो किस सिचुएशन में पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, कौन से ऐसे वार्निंग साइन डेंजरस हो सकते हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
1: वार्निंग साइंस, जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत हाई ग्रेड फीवर हो, डेट इज वन ऑफ द प्राइम सिम्टम। अगर बुखार बहुत तेज है और नहीं टूट रहा है दवाइयों से, तो ऑब्वियसली शुड गो, हाई ग्रेड फीवर है तो आपको जरूर हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके आगे जो ग्रेविटी है, जो कई बार जिसे हम कहते हैं कि पेशेंट के सीरियसनेस का, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग्स बहुत ज्यादा होना, नाक में से या गम्स में से ब्लीडिंग होना या स्टूल के रास्ते ब्लीडिंग होना, सांस लेने में कोई तकलीफ होना और बहुत अत्यधिक कमजोरी होना, पानी का डिहाइड्रेशन और रैशेस बहुत ज्यादा होना, बहुत लो प्लेटलेट्स चले जाना, दीज आर ऑल सिम्टम जहाँ इमीडिएट आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज की कॉन्वर्सेशन लिसनर्स आपको अवेयर एंड अलर्ट बनाने में मदद करेगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके।
2: कल मिट

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है फिट है तो हिट है, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल डेंगू डे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजीव चौधरी फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल। सो डॉक्टर, अब आप लिसनर्स को नेशनल डेंगू डे के इवेंट पर क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन?
1: मैं यही कहना चाहूंगा इस पर्टिकुलर डिजीज में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये नॉर्मली ये मच्छर के काटने से बेसिकली आपको डेंगू होता है, तो जो भी प्रिवेंशंस मैंने बोले तो अगर हम वो रखते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन प्रिवेंट योर डिजीज। सेकंड मैं यही कहना चाहूंगा, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आप डेंगू को हराएं। और अपने आसपास जितना सफाई रख सकते हैं रखिए, और जो भी स्टैंडिंग पानी है, साफ पानी जो खड़ा हुआ, उसको आप रेगुलर क्लीन करिए और उसको साफ रखिए। थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। सो माय डियर लिसनर्स, डेंगू से बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है अवेयरनेस, क्लीनिनेस और टाइमली ट्रीटमेंट। खुद भी सेफ रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर कीजिए। इसी के साथ मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त आरजे अंजलि और शो लेकर आई थी फिट है तो हिट है। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए अवेयरनेस टिप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी स्टे अवेयर, क्योंकि फिट है तो हिट है। और साथ ही बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें ऐसा क्या था जो पहले नहीं था?
1: ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है
0: जी
1: 2020 में, ये इतने डेकेड्स के बाद सरकार ने चेंजेस किए हैं, लेकिन बहुत अच्छे चेंजेस किए हैं। इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो हम ब्रिटिशर की बनाई हुई फॉलो कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी पॉलिसी जान के बनाई थी कि हमारी थिंकिंग स्किल्स के लिए, रीजनिंग स्किल्स के लिए कोई जगह ही नहीं थी
0: जी।
1: वो ये चाहते थे कि बस वो इंडियंस को ऐसी एजुकेशन दें कि वो क्लर्क्स बने, और इससे अधिक वो उनके लिए कुछ ना कर सकें, कुछ अपने देश का उत्थान कर ही ना सकें
0: जी।
1: और हम सालों साल डेकेड से उसी लीक को पीट रहे थे, कुछ चेंज नहीं करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आफ्टर ऑल बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने इतनी अच्छी पॉलिसी लाए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, कि पूरा फेस लिफ्ट हो गया एजुकेशन का। इसमें क्या है, अब एक स्टूडेंट का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, मॉरल वैल्यूज है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ये नहीं रोट लर्निंग की कोई जगह ही नहीं है उसमें
0: जी।
1: और बच्चा जो है सोच समझ के रीजनिंग के क्वेश्चन करेगा, अपने माइंड को अप्लाई करेगा, ये नहीं कि टीचर ने पढ़ा दिया और वो एक मतलब एक मूक दर्शक की तरह टीचर को नहीं देखेगा। इंटरेक्टिव सेशन होंगे, जो टीचर पढ़ाएगी वो एक्टिविटी बेस्ड होगा और जॉयफुल क्लासरूम होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, मतलब जो बच्चे ने पढ़ा, मान लीजिए परसेंटेज पढ़ा दिया, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएगा कि तुम दुकानदार के पास गए, तुमने परसेंटेज पढ़ा, 50% तुम्हें डिस्काउंट कर रहा है, तो बताइए कितने रुपए का सामान कितने में तुमने खरीदा, ऐसे कुछ एग्जांपल करके दुकान से सेट कर दी जाएगी। यानी प्ले वे मेथड हो गया सीनियर क्लासेस के लिए भी, स्पेशली मिडिल स्कूल्स के लिए। यानी पढ़ाई का जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा कम हो गया, और सबसे अच्छी बात है इंक्लूसिव एजुकेशन दे दी, हर बच्चा बराबर है
0: जी।
1: और उसके साथ स्किल डेवलपमेंट कर दिया, जो बच्चे आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो मतलब अपना कुछ क्राफ्ट वर्क में आगे निकल सकते हैं, गार्डनिंग में आगे निकल सकते हैं, डिजिटल चीजों में आगे निकल सकते हैं, बहुत सारी लाइंस हैं। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करके एग्जाम ही देना है
0: जी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: मैम एक और सवाल है, क्या ये पॉलिसी सिर्फ अर्बन स्कूल्स के लिए प्रैक्टिकल है या छोटे शहरों और गांवों में भी इक्वली लागू की गई है?
1: नहीं, ये सभी जगह के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है
0: जी,
1: क्योंकि आगे एक स्कॉफ भी सरकार ने बना दिया है।
0: जी जी।
1: अब स्कॉफ क्या करता है कि अगर आप ये एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू करें, उसकी चेकिंग करेगी सरकार।
0: ओके।
1: और वो फॉर्म भरते हैं स्कूल के लोग और वो जाती वहाँ और केवल जाते जाके जमा होके खाना पूरी नहीं हो रहा है, वो उसको देखते हैं, चेकिंग करते हैं और उनके एफिलिएशन पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं
0: जी।
1: अगर ये नहीं हुआ फिर उनको समय दिया जाएगा कि आप इस काम को करिए। तो ये मेयर आई वॉश नहीं है और इसके लिए सरकार ने सीबीएसई ने एक काम और किया है कि टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। अब हर स्कूल में टीचर्स ट्रेन्ड है इसी एजुकेशन पॉलिसी के लिए और वो रिसोर्स पर्सन कहलाते हैं। अभी क्या है कि 50 आवर्स की ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दी है टीचर्स के लिए कि तुम अपनी ग्रोथ करो हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से
0: जी।
1: और ये 25 आवर्स जो है वो सीबीएसई आके करता है और 25 आवर्स ये बाहर से किसी को बुला सकते हैं।
0: ओके।
1: तो ये सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है और चेकिंग कर रही है।
0: जी जी। आज के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ऑप्शंस बहुत हैं उनके पास लेकिन कहाँ जाएं ये रास्ता उनको एग्जैक्टली नहीं पता है। तो क्या ये एनईपी क्लैरिटी दे रही है या कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ा रही है?
1: नहीं, कोई भी अच्छी जब नीति आती है तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और नए रास्ते खोलने के लिए आती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि क्या होता है कि जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स कहते हैं भाई हम तो साइंस लेंगे।
0: हाँ जी।
1: और स्कूल भी उनको साइंस दे देता है कि नहीं नहीं अगर कम मार्क्स हैं तो आप आर्ट्स में जाइए या कॉमर्स में जाइए, जो कम मार्क्स के होते हैं वो कॉमर्स में चले जाते हैं। अभी जो सिस्टम बना हुआ है ये भी खत्म हो जाएगा और कम वाले आर्ट्स में चले जाते हैं। मगर देखिए पेरेंट्स भी परेशान हो जाते मार्क्स नहीं आए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी रेडियो महारानी के माध्यम से कि हर बच्चा अच्छा है, हर बच्चे की अलग प्रतिभा है। जीवन में होता क्या है, जो साइंस लेता है वो इंजीनियर बनता है, मान लीजिए वो आईआईटी का इंजीनियर बन गया, ठीक है आप खुश हो गए। लेकिन उसके ऊपर उसका मैनेजर जो होता है वो एमबीए होता है जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड का होता है और इंजीनियर भी नहीं होता, यानी आईआईटी के ऊपर एक कॉमर्स वाला आ गया
0: जी,
1: और कॉमर्स वाले मैनेजर के ऊपर आईएएस आ जाता है जो आर्ट साइड का होता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो देखिए ना हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक बार क्या हुआ, एक जंगल में शेर ने कहा कि सारे जानवरों तुम मेरे पास आओ, मैं अपना उत्तराधिकारी अपने बाद राजा मैं डिक्लेयर करूंगा, सबसे शक्तिशाली वो माना जाएगा जो पेड़ पे चढ़ जाएगा। अब सारे जानवर चुप, बंदर तो उछल के पेड़ पे चढ़ गया, हाथी बेचारा सूंडी हिलाता रह गया, मछली तो तालाब से ही निकल के नहीं आई। तो क्या इसका मतलब ये है कि बंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं था? हर एक के अंदर अगर तैरने की अगर स्विंग का कंपटीशन होता तो मछली फर्स्ट आती, बेचारा बंदर तो शायद डूब ही जाता। तो हर बच्चे के अंदर अलग अलग, जैसे अलग अलग फूलों की खुशबू है, तो हर बच्चा अच्छा है। जो थोड़ा स्लो लिखता है उसके लिए सरकार ने क्या किया है, सीबीएसई ने टाइम बढ़ा दिया है, स्पेशल एजुकेटर्स रिक्रूट करवा दिए हैं कि उनको थोड़ा, उनकी बुद्धि है मगर वो थोड़ा सा लेट लिखते हैं, तो उनको एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी टाइम उनका बढ़ गया, जिससे हर बच्चे को अपनी प्रतिभा दिखाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। हमारे जो फ्यूचर सिटीजन्स हैं वो अच्छा ग्रो करें और अच्छे सिटीजन्स होंगे तो अच्छे देश का निर्माण हो
0: जी।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: वर्सेस स्किल्स, ये डिबेट बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन क्या एनईपी जो है वो सच में मार्क्स का प्रेशर कम कर रही है?
1: जी हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, जो पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है. मार्क्स के पीछे नहीं भागना है. जैसे वो आपको थ्री इडियट्स में कहता है ना कि भाई मार्क्स के पीछे नहीं भागो, अपने को खुद इतना अच्छा बनाओ कि कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी. अगर बच्चा कामयाब है किसी भी चीज में, वो कामयाब है, तो वो जरूरी नहीं है कि मार्क्स से ही आए. मैंने अक्सर देखा है कि जो मतलब जिसको हम लोग स्कूल में बैक बेंचर्स बोल देते हैं, वो बहुत अच्छा जिंदगी में कर जाते हैं. तो मार्क्स कोई भी 3 घंटे का पेपर किसी भी बच्चे की क्षमता को आंक नहीं सकता है.
0: जी जी जी.
1: तो बच्चे के अगर मार्क्स कम आते हो, पेरेंट्स को बिल्कुल भी उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए. जो बच्चा अच्छा कर सकते हैं, उसको स्किल अच्छा है तो स्किल में डाल दें, और स्किल वाले तो अपना काम खोल लेते हैं.
0: जी.
1: अगर वो कुकिंग थोड़ी सीखी है या उन्होंने स्किल में, जैसे सरकार ने सीबीएसई ने स्किल डेवलपमेंट में डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा रहे हैं, कुकिंग सिखा रहे हैं, गार्डनिंग सिखा रहे हैं, क्या पता बच्चा अपना क्या बिजनेस खोल ले.
0: एग्जैक्टली. जी मैम, जैसे अगर हम आपके टाइम की बात करें तो ये डिजिटल एरा जिसको कहा जा रहा है, एआई का जमाना है, तो क्या ये एनईपी जो है वो फ्यूचर करियर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है?
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है. बिल्कुल, ये फ्यूचर करियर को देख के ही बनाई गई है. देखिए, हमारा जो इंडियन माइंड है, चाहे वो टीचर हो चाहे बच्चा हो, वर्ल्ड में इट इज सेकंड टू नन. मैंने तो देश विदेश में हर जगह एजुकेशन पॉलिसी स्टडी करी है. अमेरिका में हम स्कूल्स विजिट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्कूल विजिट्स करते हैं, और अपने मॉरल वैल्यूज भी बच्चों को देते हैं, वहां से भी कभी कुछ बहुत कुछ सीखते हैं. तो ये है कि अब सरकार ने, अब ये ग्लोबल वर्ल्ड है, यहाँ के बच्चे वहां जाते हैं.
0: हाँ जी.
1: अगर ये इतने अच्छे बच्चे हमारे नहीं होते तो इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पे अमेरिका में काम नहीं कर रहे होते.
0: जी, जी.
1: और अब क्या होगा, हमें लगता है आगे कुछ साल बाद, शायद भगवान करे ऐसा ही हो कि विदेशों के लोग को हमारे यहाँ काम करने आना पड़े.
0: जी, जी.
1: और हमारा देश इतना आगे बढ़े, सरकार ने यही सोच करके ये एजुकेशन,
0: आपने जैसे कहा कि आपने बाहर की जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो भी देखी हैं, तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी से कितनी डिफरेंट है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी.
1: हाँ, ऐसा है कि दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी है, और दोनों एक तरीके से सेम ही है. दोनों का मतलब है बच्चों को अच्छा बनाना. ठीक है. अभी क्या है कि इंडिया में बच्चा पढ़ता बहुत है, उसके ऊपर प्रेशर बहुत है.
0: एग्जैक्टली.
1: और टीचर के ऊपर तो अति का प्रेशर है. फॉरेन कंट्री में पढ़ाई खेल खेल के होती है.
0: जी.
1: बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है. प्राइमरी में तो बुक्स ही नहीं है.
0: जी.
1: तो प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं है, सारी चीज प्रैक्टिकल है. और वहां पर जो चीज है, वहां पे साइंटिस्ट पैदा किए जाते हैं, इसीलिए वो लोग साइंस में बहुत आगे जाते हैं.
0: जी.
1: और हमारे यहाँ अभी तक जो सोच थी वो नौकरी की सोच थी, लेकिन आप देखिए इंडिया में डिजिटल आने से, और जो 2020 में जो पॉलिसी आई, तो लोगों की सोच बदली. अब लोग अपने अपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं. ये एनईपी की देन है. और अब हमारे यहाँ भी धीरे धीरे प्रेशर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जॉयफुल क्लासरूम लर्निंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है एनईपी का.

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल, इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: तो अब हम आखिरी सवाल पर बढ़ते हैं। आखिरी सवाल ये है मेरा आपसे, अगर आज के स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर सेफ नहीं है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज होने वाला है आपका?
1: कभी कभी क्या होता है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और मार्क्स नहीं आते हैं, और वो हताश हो जाते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आए, फिर फेल हो गए। मान लीजिए टेस्ट में बच्चा फेल हो गया, उसके 25 में से 5 आए, उसने मेहनत करी
0: जी,
1: और उसके 25 में से 10 आए, वो बच्चा फिर फेल हो गया
0: जी।
1: लेकिन उस बच्चे को ये सोचना चाहिए कि मेरी मेहनत से 5 से 10 बने हैं
0: जी,
1: एक महीने में, तो अगले टेस्ट में हम 15 बना के पास हो जाएंगे
0: जी।
1: और फिर भी कभी कभी बच्चे की कॉम्पिटेंसी नहीं होती, उतना कॉम्पिटेंट उस सब्जेक्ट में नहीं होता है, पता चला मैथ्स में बच्चे वीक हैं और इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, तो वो उसी सब्जेक्ट को पकड़े जिसमें अच्छे हैं। पर ये कभी निराश नहीं होना चाहिए बच्चों को कि मेरे भाग्य में नहीं है, मैं हताश हो गया और स्ट्रेस ले ले। मैं उनके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी लिखी हुई
0: जी, जी।
1: हाथों की लकीरों को देखकर कभी हताश नहीं होते, हाथों की लकीरों को देखकर कभी निराश नहीं होते। अरे भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत जी। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पर आए और हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इतनी सारी बात बताई, थैंक यू सो मच। तो मैम एक और सवाल है मेरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या नई किताबें भी चाहिए?
1: हाँ जी, जब हर टीचर को ट्रेन करना है तो क्यों ना उसको वो किताबें पकड़ा दी जाए कि वो हर लेसन को कैसे पढ़ाए
0: जी,
1: क्योंकि हर लेडी की अपनी क्षमता है, हर जेंट्स की, टीचर की अपनी क्षमता है, वो किसी चीज में अच्छा है, वो कोई किसी चीज में अच्छा है
0: जी।
1: तो अभी यही सोच करके, एज ए रिसोर्स पर्सन, और मैंने विदेश में भी पढ़ाई करी है, वो सब चीजों को सोच करके मैंने मेरी कंपनी के लिए इंग्लिश ग्रामर की बुक्स लिखी है 1 से 8, जो कि स्कूलों में लगा भी दी गई है, फरीदाबाद के स्कूलों में भी लग गई है
0: जी।
1: और उसमें क्या है, खाली कंटेंट नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है या क्वेश्चंस कैसे पढ़ाए जाएंगे या स्टेटमेंट कैसे है, कंटेंट तो है ही, उसमें यह है कि कैसे पढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ाना है। टीचर आएगी, बैग दिखाएगी, दिस बैग इज, व्हाट कलर ऑफ दिस बैग, तो बच्चा बोलेगा ब्लैक, यस ब्लैक इज ऑब्जेक्टिव। मतलब आसपास के जो क्लासरूम में एग्जाम्पल्स हैं वो देख देख के टीचर उसको कैसे पढ़ाए, टीचर को भी आनंद आए और बच्चे को भी आनंद आए। और ये किताबें मेरी बहुत सराही गई हैं, और ये मुझसे कहा गया है कि आप 1 से लेकर 12 तक लिखे, तो होपफुली हमारी कंपनी 12 तक इसको कंप्लीट कर लेगी, बहुत मेहनत करी सबने इसमें
0: जी। थैंक यू सो मच मैम एक बार फिर से रेडियो महारानी के स्टूडियो में आने के लिए, वंस अगेन थैंक यू
1: मैडम
0: जी। और लिसनर्स आप सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद की।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: यूपी का एक छोटा सा कस्बा बुढ़ाना, वहाँ से एक लड़का निकलता है हाथ में केमिस्ट्री की डिग्री लेकर। कुछ वक्त नौकरी की पर दिल नहीं लगा। पता है दोस्तों, एक्टिंग का चस्का उन्हें ऐसा लगा कि वो दिल्ली पहुंच गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। पर एनएसडी में दाखिला लेना तो सिर्फ पहला कदम था, असली चैलेंज था अपना पेट भरना। नवाज ने वहाँ के एक बिल्डिंग में वॉचमैन की नौकरी की। सोचिए, पूरा दिन गार्ड की ड्यूटी और शाम को एक्टिंग की प्रैक्टिस। उन्होंने ठान लिया था कि काम चाहे कोई भी हो, मंजिल से ध्यान नहीं हटाना है। 1996 में जब वो मुंबई आए तो उन्हें लगा था कि उनका हुनर उन्हें रास्ता दिखा देगा, पर मुंबई की भीड़ में वो कहीं खो से गए। एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां उनके लुक्स उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन गए।
0: और बाद में कैसे उनका स्ट्रगल चालू हुआ, करेंगे इसके बारे में बात, मगर थोड़ी देर बाद। फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। मैं हूँ मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद रीत।

0: प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओप्पा जी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप लोग जानते हो कि एक वक्त ऐसा था जहां नवाज के पास ना सर पर छत थी और ना ही जेब में पैसा, सिर्फ एक पुराना खत था जो उन्हें हर रोज गिरने से बचाता था। वो खत किसका था, करेंगे इसके बारे में बात। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और कामयाबी की उड़ान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में और उनकी स्टोरी को नरेट करने के लिए मेरे साथ है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: मुंबई में नवाज का कोई गॉड फादर नहीं था। वो ऑडिशन देते पर हर जगह से एक ही जवाब मिलता, आप हीरो जैसे नहीं दिखते। साल दर साल बीतते गए, वो 12 साल तक छोटे मोटे रोल करते रहे। कभी सरफरोश में एक मिनट का रोल, तो कभी मुन्ना भाई MBBS में एक पॉकेट मार। पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों के साथ एक कमरे में रहते और उनके लिए खाना बनाते ताकि रहने की जगह मिल सके। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो टूटने लगे थे, तब उनकी माँ ने उन्हें एक खत लिखा। उसमें लिखा था, बेटा कचरे के ढेर की जगह भी 12 साल में बदल जाती है, तू तो फिर भी इंसान है, हिम्मत मत हारना। बस वही एक लाइन उनका सहारा बन गई। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे।
0: और कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने छोटे छोटे रोल्स के बाद करा फैजल खान का रोल, द आइकॉनिक रोल, करेंगे इसके बारे में भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा ही में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: फरीदाबाद शहर की हर अपडेट विद मसाला चाय सुनने के लिए सिर्फ रेडियो महारानी बजाएं।
1: इमोशन जागे रे मन मा, इमोशन जागे।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
3: ना दे दिल पर देसी नू तेनू नित दा रोना पै जाऊगा, नाल रजे ते जोगी दे तेनू जोगन होना पै जाऊगा।
2: Get ready!

0: हर इंसान की लाइफ में एक सेटबैक आता है और फिर हर इंसान कमबैक करने की कोशिश करता है, और ऐसा ही था नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ में। अभी तो सिर्फ स्ट्रगल था, अब देखिए असली धमाका, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे किरदार की जिसने रातों रात बॉलीवुड के सारे बड़े स्टार्स की छुट्टी कर दी थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड होस्ट आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं द लेजेंडरी एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और उनकी लाइफ की स्टोरी को नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीम। तो माइक ओवर टू रीम।
1: कहते हैं ना कि टैलेंट को आप ज्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकते। 2012 में वक्त ने ऐसी करवट ली वो देखता रह गया। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर आई और पर्दा फट गया। नवाजुद्दीन जब फैजल खान बनकर स्क्रीन पर आए तो लोगों को समझ आया कि असली एक्टिंग क्या होती है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये नवाजुद्दीन का उन सारे रिजेक्शंस को जवाब था जो उन्होंने बरसों तक झेले थे। कहानी फिल्म के गुस्से वाले ऑफिसर से लेकर वासेपुर के गैंगस्टर तक नवाज ने रातों रात सबको अपना फैन बना दिया। जो इंडस्ट्री उन्हें रिजेक्ट करती थी आज वही उनके पीछे लाइंस लगाए खड़ी थी। उनका स्ट्रगल अब हिस्ट्री बन चुका था।
0: और कैसे उन्होंने बॉलीवुड से रेड कार्पेट तक का सफर किया, करेंगे इसके बारे में भी बात मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, एंड मेरे साथ

0: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: सोचिए, एक वक्त जिस शख्स ने दूसरों के बंगलों के बाहर पहरा दिया, आज उसका अपना घर देखकर दुनिया दंग रह जाती है। वॉचमैन की वर्दी से लेकर कांस के एक्सपेंसिव टक्सीडोस तक, ये सब पर सिर्फ सक्सेस नहीं, एक स्टेटमेंट थी। लेट्स टॉक अबाउट हिज फाइनल फ्लाइट। आज हम लोग बात कर रहे हैं कामयाबी की उड़ान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और कैसे उन्होंने रेड कार्पेट तक का सफर किया। करेंगे इसके बारे में बात, और इसके बारे में नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीस। तो माइक ओवर टू रीस।
1: आज का सीन देखिए दोस्तों, वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कभी वॉचमैन थे, आज कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर चलते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड्स में उनका बोलबाला है। मुंबई में उनका अपना एक शानदार बंगलो है जिसे उन्होंने नाम दिया है नवा। ये उनके पिता के लिए एक सम्मान है और उनकी अपनी मेहनत का इनाम। नवाजुद्दीन की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपके पास पेशेंस है और आप अपनी स्किल्स पर काम करते रहें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उड़ने से नहीं रोक सकती। उनकी ये उड़ान आज हर उस यंग ड्रीमर के लिए एक उम्मीद है जो जीरो से शुरू कर रहा है।
0: जहाँ लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सफर चुना, क्योंकि असली पहचान मंजिल से नहीं संघर्ष से बनती है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि संघर्ष हमेशा जारी रखना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9654896896। मैं फिर मिलूंगा आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

असी गबरू पंजाबी दिल जी दे नाले लाइए हुन छड़ के ना जाइए नी जदों कर लिए प्यार सारे काल करार पूरे करके बखाइए भावे कर जग वै पिछे करी दानी पैर असी तोड़े चढ़ाइए नी जिन्हों दिल च बसाइए ओनू जिंद भी बनाइए कदे अक ना चुराइए नी।

इस इलाके में नए आए हो साहब, क्योंकि हेलमेट पहन के राइड करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।

0: 89.6 FM।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

आपके लिए अंग दान, नेत्र दान और देह दान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आप सबने हमारे इस कार्यक्रम में अंग दान, उतक दान और देह दान से जुड़े लोगों के अनुभवों को सुना है तथा इन विषयों से जुड़े डॉक्टर्स के द्वारा दी गई जानकारी ली है। हमारे देश में उतक दान की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आई डोनेशन और स्किन डोनेशन के बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो उतक दान से जुड़ी जानकारी देंगे, तो सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: भाई तरह देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा

जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर।

0: एक बार फिर आप सभी का ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। आज हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा है और वो बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से, जो हमें स्किन डोनेशन से जुड़ी खास जानकारी देंगे। तो चलिए उनके पास चलकर बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, हम हमेशा आपसे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात करते हैं और उनके विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम खास तौर पर स्किन यानी कि त्वचा के प्रत्यारोपण के बारे में लेके आए हैं। दोस्तों, हमने अपने पहले के कई कार्यक्रमों में टिश्यू डोनेशन यानी कि ऊतक दान के बारे में बताया है और स्किन डोनेशन भी एक तरह का ऊतक दान ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी, जो कि बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं और भोपाल शहर के जाने माने विशेषज्ञों में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर राठौर, मैं सभी दर्शकों और ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ।
2: जी धन्यवाद। धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ बांट सकूं और ऑर्गन इंडिया के इस ऑर्गन डोनेशन अभियान का हिस्सा बन सकूं। मुझे बहुत खुशी है।
1: डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि स्किन डोनेशन क्या होता है, स्किन ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग किस तरह के मरीजों के काम में आती है।
2: देखिए, जिस तरह आपने सुना होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसी तरह स्किन ट्रांसप्लांट होता है। स्किन ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी और व्यक्ति की स्किन को यदि मरीज में दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो उस चीज़ को हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो एक अलग है। स्किन ग्राफ्टिंग में पेशेंट की स्किन पेशेंट के घाव भरने के लिए लगाई जाती है और स्किन ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन को पेशेंट में लगाया जाता है तो उसे हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्किन ट्रांसप्लांट बहुत ही कारगर मेथड है, स्पेशली बर्न वाले पेशेंट्स में, जिनमें जो है अधिक डिग्री का और अधिक मात्रा में बर्न होता है। जैसे कि आप समझिए कि यदि किसी को 60-70% का बर्न है तो उसके पास इतनी अवेलेबल स्किन नहीं है कि हम उस घाव को जो कि उस बर्न के बाद हुआ है उसको स्किन से भर पाए, तो उन कंडीशंस में हमें स्किन डोनर्स की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत एक्सटेंसिव ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो है स्किन डोनर की हमें ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि एसिड विक्टिम्स जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी एक्सटेंसिव बर्न होता है, उसमें भी स्किन डोनेशन की बात होती है। यदि आप आंकड़ों की बात करें तो साल भर में लगभग 10 लाख लोग जलते हैं और कम से कम 3-4 लाख लोगों को स्किन डोनेशन से बहुत हेल्प मिलती है और इनको होने वाले संक्रमण के खतरे और मृत्यु का जो खतरा है उसे स्किन डोनेशन के माध्यम से टाला जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि स्किन डोनेशन किस तरह से किया जाता है।
2: देखिए, स्किन डोनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइफ डोनर और आफ्टर डेथ दोनों तरीके से स्किन डोनेट किया जा सकता है। लाइफ डोनर का मतलब है कि कोई भी जिंदा आदमी, चाहे वो उस पेशेंट का रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो स्किन डोनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, कोई भी 18 साल का व्यक्ति जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है स्किन को डोनेट कर सकता है। दूसरी बात आती है कि किस किस तरह से हम और कहाँ कहाँ से स्किन ले सकते हैं। जनरली हम बॉडी के हिडन पार्ट मतलब छुपे हुए भागों से स्किन लेते हैं, जैसे कि थाइस हो गई या फिर बटक्स वाले रीजन्स हो गए, ताकि आपका स्किन हार्वेस्ट करने के बाद भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो डिफॉर्मिटी है वो आपके कपड़ों में ढकी हुई रहती है। कोई बहुत मेजर विकृति इसमें नहीं बनती है क्योंकि इसमें स्किन का सुपरफिशियल जो पार्ट है वो लिया जाता है। स्किन की दो लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस का आधा भाग लिया जाता है, तो वो नीचे जो थाइस पे आपको घाव बनता है वो अपने आप 21 डेज में ऑटोमेटिकली हील अप हो जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ विद इन 6 आवर्स जो है हम स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्किन को हार्वेस्ट हम दोनों लेग से करते हैं, दोनों अपर लिम्स मतलब ऊपर के दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे ड्रेसिंग कर दी जाती है, तो आपको बॉडी भी बहुत ज़्यादा म्यूटिलेटेड कंडीशंस में नहीं दिखती है, ताकि आपके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट नहीं करते।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और थोड़ी ही देर में हम वापस आके अपनी इस बात को कंटिन्यू करेंगे।
3: मानव का सम्मान करें, हम सब अंग दान करें।

life. Of course, per se, water saves cinematic vibes. Agar pani nahi hota, to Bollywood ke kitne gaane adhure reh jaate. Jack aur Rose aaj bhi Titanic ghuma rahe hote. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम बात कर रहे हैं भोपाल शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील राठौर जी से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम जिंदा रहते हुए और मरने के बाद दोनों तरह से स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो आपने बताया कि स्किन में जो दो लेयर्स होती हैं उसमें से सिर्फ हम ऊपरी लेयर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरफिशियल लेयर लेते हैं। तो जब हम जिंदा रहते हुए अगर अपने स्किन को डोनेट करते हैं जहाँ से हम स्किन ले रहे हैं, तो उस पार्ट पे जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो चीज़ें नहीं दिखती क्या?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्किन है उसको ऊपरी लेयर किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी जो है, स्किन जो है वो बॉडी का आउटर कवर है, तो स्किन की ऊपरी जब हम लेयर लेते हैं तो उसमें अंदर का कोई भी मांसपेशी या ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता और स्किन एज ए बॉडी कवर यूज़ किया जाता है या बॉडी कवर यूज होता है। इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन यदि आप स्कारिंग और डिफॉर्मिटी की बात करें तो वो गंदा दिखेगा, सुपरफिशियल लेयर लेने की वजह से वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट स्कार भी नहीं आता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम बॉडी के जो है हिडन पार्ट से लेते हैं, तो आपको इस बारे में कि कोई शारीरिक कमजोरी होगी, कोई मेजर डिफॉर्मिटी होगी या कोई बहुत भद्दा सा स्कार आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम मरने के बाद भी अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो मरने के बाद हम कितनी देर के अंदर, आपने बताया कि 6 घंटे के अंदर हम स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो उन 6 घंटों में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, अगर ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहें?
2: स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इवन मरने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं, तो कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि जिस पेशेंट की आप स्किन हार्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर जो डोनर आपके पास अवेलेबल हो वो किसी भी तरह से कुछ इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोई स्किन का इन्फेक्शन, कोई स्किन का ट्यूमर या फिर कोई स्किन की गंभीर बीमारी उस पेशेंट्स को, जिनको इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं है, तो 6 घंटे के अंदर हम किन्हीं भी कंडीशन में स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेशल प्रिकॉशन।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर जिसको हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनसे हमारा ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैच होना ज़रूरी है, HLA मैच होना ज़रूरी है, तभी हम अपना कोई ऑर्गन रेसिपिएंट को दे सकते हैं। तो क्या स्किन डोनेशन के टाइम पर भी ब्लड ग्रुप का मैच होना या टिश्यू मैच का होना बहुत ज़रूरी है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। स्किन ट्रांसप्लांट या स्किन डोनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट यही है कि स्किन डोनेशन के लिए किसी भी तरह का टिश्यू मैच या HLA मैचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पेशेंट आफ्टर डेथ स्किन को डोनेट कर सकता है, तो आपको किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुपिंग या किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट स्किन डोनेशन में नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि कॉर्निया और दूसरे टिश्यूज़ को हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो क्या हम स्किन को भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कितने समय के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं?
2: बिल्कुल, स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जैसे आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे के बाद स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो आपको कोई ना कोई इमीडिएट रिसिपिएंट की ज़रूरत होती है उसके ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन स्किन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्किन में हम स्किन बैंक में स्किन को 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं, इवन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 21 डेज के लिए जो है स्किन को स्टोर कर सकते हैं। तो स्किन डोनेशन में ये ज़रूरी नहीं कि जब आप डोनेट करने जा रहे हैं या आपका पेशेंट स्किन को डोनेट करने जा रहा है तो इमीडिएट रिसिपिएंट के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस स्किन को 5 साल तक किसी भी और मरीज के लिए यूज़ किया जा सकता है, इमीडिएट रिसिपिएंट की इसमें नीड नहीं।
1: डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से, और कुछ ही समय में हम वापस आएंगे और अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती में ही दी सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती में ही दी सजाएं, आओ मिल के एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिल के एक दिया जलाएं। अंतरतम के विश्वास संग बाती में ही दी सजाएं, आओ मिल के एक दिया जलाएं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौड़ी से जो कि प्लास्टिक सर्जन है। सर, जब हम लोगों से इस बारे में बात करते हैं स्किन डोनेशन के बारे में तो हमारे सामने इससे जुड़े कई गलत तथ्य और भ्रांतियाँ सामने आती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इनके बारे में सही जानकारी हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहला जो मिथ आता है वो सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन डोनेट करने पे हमारी बॉडी या हमारी उस बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट विक्षिप्त हो जाता है, म्यूटिलेटेड हो जाता है, तो क्या ये सही है?
2: देखिए, ये मिथ जो है, ये भ्रम जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्किन डोनेशन में जो स्किन ली जाती है उसकी ऊपरी परत ली जाती है। उसको परत लेने के बाद जो शरीर का जो घाव रहता है वो 2 से 3 हफ्ते में बॉडी उसको अपने आप हील कर लेती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, हल्का फुल्का निशान ज़रूर रह सकता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जनरली स्किन डोनेशन के टाइम हम ट्राई करते हैं कि बॉडी के हिडन पार्ट से स्किन ली जाए, जैसे आपके थाइस के पीछे का एस्पेक्ट जो आपके कपड़ों के बाहर जो है जनरली दिखाई नहीं देता। और स्किन अकेले लेने की वजह से उनके अंदर के जो मांसपेशियाँ या फिर जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होता। तो आपका ये कहना कि बॉडी म्यूटिलेटेड हो जाती है या फिर कोई शारीरिक कमजोरी डेवलप होगी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। इस तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती।
1: जी, एक दूसरा भ्रम भी है जो अंग भंग को लेकर है कि हमारी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी इसके आड़े आते हैं। जैसे कि हिंदू मिथोलॉजी में ये कहा जाता है कि अंग भंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसे दुनिया में आए थे आप वैसे ही दुनिया से जाने चाहिए, अदरवाइज आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये अंग भंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप इसके बारे में
2: देखिए। स्किन डोनेशन में ये चीज़ अच्छी है कि किसी भी तरह का कोई भी अंग भंग जो है आपको मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जो है वो सिर्फ स्किन का जो है हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जो है ड्रेसिंग कर दी जाती है। तो किसी भी तरह का जैसे हाथ या पैर का कटना, उस तरह का कटना जो है स्किन डोनेशन में नहीं किया जाता है। कोई भी हाथ या पैर नहीं निकाला जाता है, मृत शरीर के बॉडी पार्ट्स सारे अटैच होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के भी जो हिस्से रहते हैं उनसे स्किन की ऊपरी लेयर निकाल दी जाती है। तो आपका ये कहना कि स्किन डोनेशन के बाद जो आपको बॉडी मिलेगी किसी तरह का उसमें अंग भंग रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी किसी भी तरह का बॉडी म्यूटिलेशन या अंग भंग आपके मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा।
1: एक और भ्रांति है कि अगर मेरी स्किन पर कोई टैटू है या स्टिकर है तो मैं स्किन डोनेट नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं
2: नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके स्किन पर टैटू है या फिर कोई मार्क है तो आप स्किन डोनेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके शरीर पर टैटू हो या नहीं हो, किसी भी पार्ट की बॉडी की स्किन ली जा सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस टैटू वाले पार्ट की यदि स्किन को लेंगे तो सामने वाले जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें भी वो टैटू ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दें और बाकी जो नॉर्मल स्किन है वहाँ से स्किन हार्वेस्ट की जाती है। हाँ, ये यदि है कि आपके होल बॉडी पे आपने टैटू करवा के रखा है फिर भी और कोई डोनर अवेलेबल नहीं है, तो लाइफ सेविंग सिचुएशन में हम उस टैटू वाले व्यक्ति की स्किन भी एज ए डोनेशन दे सकते
1: हैं। और जब हम कोई स्किन लेते हैं और जब हम उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो रिसिपिएंट होता है उसके बॉडी पर वही स्किन मौजूद रहती है या फिर सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज़ की जाती है?
2: ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। स्किन ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो स्किन है दूसरे पेशेंट की जो स्किन ली जाती है वो एक टेम्प्रेरी कवर प्रोवाइड करती है। शुरुआती दौर में 4 से 5 दिन में जो घाव है उसके ऊपर स्किन अटैच हो जाती है, उस अटैच होने की वजह से उस घाव को वो कवर कर देती है और उस दौरान का जो संक्रमण है और बॉडी के जो पोषक तत्व उस घाव से बह रहे हैं वो रुक जाते हैं। उसके रुकने की वजह से जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाता है और मरीज की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन 25 से 30 दिन बाद, लगभग 1 महीने के बाद, धीरे धीरे करके वो स्किन जो है वो झड़ने लगती है, लेकिन जो घाव है वो सिकुड़ने लगते हैं, पेशेंट रिकवर करने लगता है। और पर्टिकुलर घाव यदि उस स्किन के झड़ने के बाद जो बचते हैं उनका जो स्किन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है और उस कम रिक्वायरमेंट को हम जो पेशेंट की अवेलेबल स्किन है उस स्किन से कवर करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी बायोलॉजिकल कवर है ना, लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये एक बेस्ट बायोलॉजिकल कवर है। किसी भी ड्रेसिंग या किसी भी दवाई से अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का एक पार्ट यदि घाव पे रखा जाता है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक नेचुरल वे में कन्वर्ट हो जाता है और मरीज के बचने की संभावना है। स्पेशली एक्सटेंसिव बर्न जो बहुत ज़्यादा जले हुए रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बड़े ट्रामा वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें उनकी जान को बचाने में ये तरीका बहुत कारगर है।
1: डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार सुना है कि फेस ट्रांसप्लांट भी इस दुनिया में हुआ है, तो इस तरह की कोई चीज़ में भी ये चीज़ काम आती है स्किन डोनेशन?
2: नहीं, स्किन डोनेशन और फेस ट्रांसप्लांट दोनों जो है अलग अलग चीज़ें हैं। स्किन डोनेशन में हम स्किन की एक पतली लेयर को जो है मृत शरीर या किसी जिंदा आदमी से जले हुए मरीज में लगाते हैं उसकी जान को बचाने के लिए। फेस ट्रांसप्लांट टोटली डिफरेंट है, उसमें किसी मृत शरीर के 6 घंटे के अंदर जो है उसके पूरी चेहरे और गर्दन के स्किन को छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के साथ निकाला जाता है,
1: पूरी मोटाई के साथ
2: निकाला जाता है और उसमें रक्त की नलियाँ होती हैं जिनको हम दूसरे पेशेंट में स्पेशली बर्न विक्टिम्स जो रहते हैं जिनमें एक्सटेंसिव बर्न है जिनमें कोई और प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं फेस को सुधारने के लिए, तो उन कंडीशंस में उस पूरी मोटी स्किन को जो है पूरे फेस के स्किन को दूसरे पेशेंट के फेस पर लगाया जाता है और छोटी छोटी रक्त नलिकाओं को जोड़ा जाता है, तो जो उनका जो नेचुरल ब्लड है वो ब्लड जो है उस ट्रांसप्लांटेड स्किन में सप्लाई होता है और ऑलमोस्ट नेचुरल एक्सेप्टेबल लुक देता है। आजकल एडवांस प्लास्टिक सर्जरी के इस दौर में फेस ट्रांसप्लांट भी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, स्पेशली बर्न विक्टिम्स और ज़्यादा जले हुए मरीजों में जिनमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाता है। लगभग काफ़ी कुछ फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 5 से 10 साल में इस विधा है उसमें गति।
1: एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि किन किन परिस्थितियों में हम स्किन डोनेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम डिस्कशन करें।
2: जी, स्किन डोनर को सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। सबसे पहला रहता है इन्फेक्शन, ये आपको एश्योर होना चाहिए कि जिस पेशेंट को या जिस मृत शरीर को आप एज ए डोनर यूज कर रहे हैं यानी कि जो डोनेट करने के लिए रेडी है उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई इन्फेक्शन ना, कोई स्किन का कैंसर ना हो, कोई स्किन की और इन्फेक्शन गंभीर बीमारी ना हो, कोई और बॉडी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन ना रहा हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उस पेशेंट को ना रही हो, लेकिन ये सारी चीज़ें उस पेशेंट में नहीं होती हैं या पेशेंट या किसी व्यक्ति में जो लाइफ डोनर है तो उस चीज़ को हम जरूर डोनेट करवाते हैं, एक जो है पेशेंट में ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते।
1: दोस्तों, जैसा कि अभी हमने स्किन डोनेशन से जुड़ी हुई जानकारी और तथ्य डॉक्टर साहब के माध्यम से जाने, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डोनेशन के माध्यम से नई ज़िंदगी मिली है। कल अगर आपको किसी भी समय ये लगता है कि हमें भी स्किन डोनेट करनी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाके प्लेज फॉर्म यानी कि संकल्प पत्र भर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए हमें हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील को धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी तरफ से और आपके मंगल भविष्य की भी हम कामना करेंगे और ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।
2: नमस्कार,
1: धन्यवाद।
3: तो ये थी आज की खास बात। मैं ऑर्गन इंडिया और उनकी टीम की प्रयासों की बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ कि वो जनता के भविष्य और उनकी सेहत के लिए इतनी जटिल जानकारी जुटा के लाते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे इन प्रयासों से बहुत से मरीजों को और उनके परिवारों को फायदा हो रहा होगा, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा होगा। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त लेते हैं और जल्द वापस आएंगे नई जानकारियों के साथ, नई कहानियों के साथ। आप सभी हमेशा सलाम।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एंड सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे, इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सीय सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सीय उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

कही गई है ना कहीं, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। ये लाइन हम सबने सुनी होगी, पर ऑनेस्टली बताओ कितनी बार आपने अपनी जिंदगी में इस बात को अप्लाई किया है। कभी ना कभी हम सब एक ऐसे फेज से गुजरते हैं जहां लाइफ हमें टेस्ट करती है, और उस वक्त हम डिसाइड करते हैं गिव अप करना है या लेवल अप। मैं हूं आरजे गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, जहां बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं होता, स्टोरीज होती हैं, स्ट्रगल होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रियल लोग होते हैं। और आज के एपिसोड में कहानी सिर्फ एक सक्सेस की नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अभी स्ट्रगल में हैं, जो सोच रहे हैं क्या मैं भी कर पाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर आज आपके पास से सब कुछ छिन जाए, सिर्फ आपकी मेहनत बचे, तो क्या आप फिर से शुरू करेंगे? क्योंकि आज की कहानी

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: सब कुछ बदल सकता है, इसलिए रेडियो महारानी कहता है दिल की।

आ गया है उस नाम को रिवील करने का, वो नाम जो प्रूफ है कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, माइंडसेट मैटर करता है। इनका नाम है प्रेम गणपति। यस, वही प्रेम गणपति ही डोसा प्लाजा के फाउंडर। आज जिनके आउटलेट इंडिया से लेकर दुबई और न्यूजीलैंड तक हैं, पर एक वक्त था जब मुंबई की सड़कों पर ये इंसान अकेला बिना पैसे बिना लैंग्वेज के खड़ा था। सोचिए, 17 साल का लड़का सपने लेकर आता है मुंबई, और जिस इंसान पर ट्रस्ट करके आया वो उसके 200 रुपए लूट कर चला जाता है। न घर लौटने के पैसे, न किसी को फोन करने का ऑप्शन। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते? शायद वापस चले जाते या फिर लड़ते। प्रेम ने डिसाइड किया, मैं यही रहूंगा और कुछ बन के दिखाऊंगा, बट कैसे? कहाँ से स्टार्ट किया? क्या इन्होंने कभी गिव अप का सोचा? इस सब के बारे में बात होगी, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। वक्त है गाने का। गाने के बाद

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

कभी कभी जिंदगी आपको वहां ले जाती है जहां से वापस आना ऑप्शन होता है, पर रुक कर लड़ना चॉइस होती है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूं की। अब तक मैंने आपको बताया है कैसे प्रेम गणपति मुंबई पहुंचे और कैसे एक झटके में उनसे सब कुछ छिन गया। अब जरा इमेजिन करिए, एक 17 साल का लड़का जिसे ना शहर की भाषा आती है, ना कोई पहचान है, ना पॉकेट में पैसे हैं, और उसी शहर में उसे डिसाइड करना है भागना है या बनना है। प्रेम जी का बचपन किसी फिल्म के स्क्रिप्ट जैसा नहीं था, बल्कि वो रियलिटी थी जिसे हम सब में से बहुत लोग इग्नोर करते हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में 7 भाई बहनों के बीच एक बच्चा जिसे जल्दी समझ आ गया था घर चलाना है तो खुद को रोकना पड़ेगा। 10th के बाद पढ़ाई छूट गई क्योंकि ड्रीम से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी थी। चेन्नई में छोटी मोटी जॉब्स 250 रुपए महीने, और वो भी खुद के लिए नहीं घर भेज दिए जाते थे। क्या आपने भी कभी अपने सपनों को फैमिली के लिए पॉज किया है? अब यहाँ बढ़ते हैं मुंबई में और फिर वही उनकी जिंदगी। पर उसके बाद जो हुआ वो शायद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कहानी का। महीन की एक बेकरी, बर्तन धोने की जॉब, 150 रुपए महीना, लेकिन वहाँ से इनकी एक चीज बदल गई थी, माइंडसेट। प्रेम जी ने सिचुएशन को पनिशमेंट नहीं माना, उन्होंने इसे ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया। दिन में काम, रात में वही सोना और धीरे धीरे ऑब्जर्व करना कैसे चलता है किचन, कैसे मैनेज होते हैं कस्टमर्स और कैसे बनता है फूड बिजनेस। और इसी बीच एक चीज क्वाइटली ग्रो हो रही थी, डोसा बनाने का उनका शौक। कभी कभी हमारे पैशन हमें बचा लेते हैं जब दुनिया हमें तोड़ रही होती है। 2 साल तक छोटी छोटी जॉब, सेविंग, ऑब्जर्विंग, लर्निंग, और फिर 1992 में इन्होंने डिसाइड किया अब अपना कुछ शुरू करना। कुछ बड़ा प्लान नहीं था, कोई इन्वेस्टर नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, बस थे कुछ बर्तन, एक चूल्हा और एक विश्वास। लेकिन क्या सिर्फ विश्वास से बिजनेस चल जाता है? जब इन्होंने पहली बार अपना

0: रेडियो महारान प्रेजेंट साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जंग।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत पिछले वरना हैकर आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हे ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

ये पूजा पाठ रोजे उपास आता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ही लगता है। यू शुड नो है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

बड़े एम्बिशन, नहीं बनना है नंबर वन, धन मिल भी गया टनानो सब पढ़ने वाला है कम, देख लेना सर आपके हिसाब से जो भी लमसम, बस मेरा बाप ये मुझसे बोले देर एम प्राउड यू सन, होता हूँ पैनिको विचलित, कॉस लंबी है विश लिस्ट, आपके समझो मैं गणित नहीं मस्तिष्क विकसित, आई नो एम गेल एंड गेल क्रिक

न्यू जेम्स की आवाज में गाना और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। स्टार्टअप शुरू करना आसान है, उसे सर्वाइव कराना असली खेल है। 1992 वशी स्टेशन के बाहर एक छोटा सा ठेला, इडली डोसा और एक सब्जी। प्रेम गणपति ने शुरुआत कर दी थी, पर यहाँ से स्टोरी आसान नहीं हुई, बल्कि यहीं से असली गेम शुरू हुआ। इन्होंने अपने दो भाइयों को बुलाया क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, अकेले जितना कर सकता हूँ साथ में उससे ज्यादा कर सकता हूँ। लेसन फॉर यू, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो टीम सिर्फ लोग नहीं होते, एनर्जी होती है। अब बात करते हैं स्ट्रगल की। दिन भर काम, कस्टमर्स को बुलाना, क्वालिटी मेंटेन करना, और फिर भी गारंटी नहीं कि आज प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रेम जी ने एक स्मार्ट मूव किया। उन्होंने अपने स्टॉल को डिफरेंट बनाया, जहाँ बाकी लोग कैजुअल थे वो क्लीन थे, बाकी लोग लुंगी में थे वो पैंट शर्ट में थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डोसा नहीं बेच रहे थे, एक्सपीरियंस बेच रहे थे। और यहीं से क्राउड आने लगा, इनकम बढ़ने लगी, प्रॉफिट 20,000 मंथ। अब लगता है सब सही जा रहा है, तो उसको थोड़ा ट्विस्ट देना पसंद है, स्पेशली वहीं से जहाँ आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, वहीं लाइफ में नीचे धकेलना शुरू कर देते हैं। म्यूनिसिपल ऑफिसर, ठेला जाओ, फाइन भरो, फिर स्टार्ट करो, फिर जाओ, फिर फाइन। इमेजिन करो, हर बार जब आप मोमेंटम पकड़ते हो तो कोई आकर रीसेट कर देता है। तो आपसे एक और सवाल है फिर से, क्या आप भी प्रेशर हैंडल कर पाते? कई लोग यहाँ टूट जाते हैं, लेकिन प्रेम जी ने क्या किया? इन्होंने सिस्टम को फाइट नहीं किया, इन्होंने खुद को अपग्रेड किया। इन्होंने डिसाइड किया ठेला नहीं, रेस्टोरेंट खोलना है। लेकिन रेस्टोरेंट खोलना

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस पर घोड़ा हूँ, सप्ताह से जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त पीठ का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपके

time I look into the mirror, I say thank you, God.

वेलकम बैक बिजनेस अनप्लग्ड विद आरजे के 1997 रुपए के 50,000 एक छोटा सा स्पेस और नाम डोसा प्लान। प्रेम गणपति अब नेक्स्ट लेवल पर आ चुके थे, कस्टमर्स बढ़ रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट्स आने लगे थे, नेटवर्क बढ़ने लगा था और यहीं से एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, दोस्तों ने इन्हें सिखाया इंटरनेट। अब सोचो एक इंसान जो कभी लैंग्वेज स्ट्रगल कर रहा था अब इंटरनेट से रेसिपी सीख रहा है, यही डिफरेंस है लर्निंग माइंडसेट में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, डोसा को ट्विस्ट देना, फ्यूजन बनाना, चाइनीज प्लस इंडियन इज इक्वल टू न्यू कैटेगरी, अमेरिकन चॉपसी डोसा, सेजवान डोसा, पनीर चिली डोसा, लोगों को कुछ नया मिला और बिजनेस बढ़ने लगा। 2002 तक 100+ वेराइटी टर्नओवर लाखों में पर मंथ, लेकिन हर सक्सेस के बीच एक फेलियर छुपा होता है। अब इन्होंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया। अब दो रास्ते थे, छोड़ दो या सीख लो।

सक्सेस स्टोरी किसी ना किसी दिन एक छोटे से डिसीजन से शुरू होती है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूं आपके साथ गीत, और आज आपने सुनी कहानी प्रेम गणपति जी की। लेकिन ऑनेस्टली ये सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अभी स्ट्रगल में है, जो अभी डाउट में है, जो हर रात ये सोचता है क्या मैं कर पाऊंगा। प्रेम जी के पास क्या था? पैसा नहीं था, सपोर्ट नहीं था, कनेक्शंस नहीं थे, हंगर, कंसिस्टेंसी और एक डिसीजन, हार नहीं माननी है। और अब मैं आपसे सीधा बात करती हूँ, अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं माइक के उस साइड, क्या आप भी कुछ करना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई आइडिया है जो बस दिमाग में घूम रहा है, या आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो पर डर रहे हो नेक्स्ट स्टेप लेने से? तो आप ये सुनिए, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है, ना प्रेम जी के लिए आया था ना आपके लिए आएगा। स्टार्ट करना पड़ता है फियर के साथ, डाउट के साथ, इम्परफेक्ट होकर भी। और हाँ, ये शो सिर्फ स्टोरी सुनाने के लिए नहीं है, ये बल्कि आपके लिए है। मैं चाहती हूँ आप में से हर वो इंसान जो कुछ करना चाहता है हमें मैसेज करें, अपनी स्टोरी बताएं और अपना आइडिया भी शेयर करें, अपना स्ट्रगल भी, क्योंकि हो सकता है बिजनेस अनप्लग्ड पर कहानी प्रेम जी की नहीं आपकी हो। और जाने से पहले बस एक लाइन, अगर शुरुआत छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंड भी छोटा होगा। ड्रीम करो, स्टार्ट करो, गिरना भी अलाउड है, बस रुकना अलाउड नहीं है। मैं हूँ गीत, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में एक और रियल स्टोरी के साथ। टिल देन कीप हसलिंग, कीप बिलीविंग, और ये याद रखिए, मन के जीते जीत है।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

उम्र है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हट

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी इमेजिन किया है एक ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक सिर्फ फूल ही फूल हो, ना ट्रैफिक का शोर, ना शहर की भाग दौड़, बस पहाड़, बादल और हवा में घुली हुई फूलों की खुशबू। जैसे किसी पेंटर ने जमीन पर अपने सारे कलर्स गिरा दिए हो। वो कहा है कि हर जगह फूल हो जरूरी तो नहीं, कभी कभी एक जगह ही पूरी जिंदगी महका देती है। और इसी के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त आरजी अंजली, और आज कल्चर कारवा में हम चल रहे हैं एक ऐसी जगह जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती है। तो आइए आखिर जानते हैं ये जगह है कहाँ। आज बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की, यानी कि हिमालयाज की गोद में बसी एक खूबसूरत वैली जो कि इंडिया के उत्तराखंड में है। लगभग 12,000 फीट की हाइट पर बसी ये वैली सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि नेचर की लाइफ पेंटिंग है। और सबसे मैजिकल बात, ये वैली साल भर नहीं खुलती, सिर्फ मानसून के कुछ महीनों में ये पूरी दुनिया कलर से भर जाती है। वो कहा है कि कुछ खूबसूरतियाँ परमानेंट नहीं होती, शायद इसलिए और भी खास लगती है। आज बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की, वापस आकर जानेंगे आखिर इस वैली की डिस्कवरी कैसे हुई। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सफर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की। तो चलिए आइए जानते हैं आखिर इसकी डिस्कवरी हुई कैसे। कहते हैं 1931 में ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ यहाँ एक्सीडेंटली पहुंच गए थे और जब उन्होंने इस जगह को देखा तो बस देखते रह गए और तभी इस जगह का नाम उन्होंने रख दिया वैली ऑफ फ्लावर्स। सोचिए एक ऐसी वैली जहाँ नेचर खुद सरप्राइज बनकर सामने आया। वो कहा है कि कुछ जगह तक रास्ते नहीं ले जाते, किस्मत ले जाती है। इसलिए वैली ऑफ फ्लावर्स को फूलों का समंदर कहा जाता है। यहाँ 500 से भी ज्यादा स्पीशीज के फ्लावर मिलते हैं, ब्लू पॉपी, कोबरा लिली, ऑर्किड्स, ना जाने कितने सारे फ्लावर्स। और बस ये फ्लावर्स धीरे धीरे कुछ हफ्तों में पूरे वैली का कलर पैलेट बदल देते हैं। कभी वैली पिंक नजर आती है, कभी येलो तो कभी पर्पल, जैसे नेचर हर दिन नई पेंटिंग बना रहा हो। इस वैली से जुड़े बहुत सारे माइथोलॉजी और बिलीव्स भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: साइबर सिपाही,
1: यह होगी साइबर क्राइम से
0: जान। इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा फास्ट जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए 150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।
2: सर, आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
4: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की। अगर इस वैली की बात की जाए तो बहुत सारे माइथोलॉजी और बिलीफ जुड़े हैं इस वैली से। लोकल स्टोरीज के मुताबिक ये जगह परियों का गार्डन भी कही जाती थी। कई लोग मानते थे कि यहाँ देवता और परियाँ आती हैं। और ऑनेस्टली जब बादल पहाड़ों को टच करते हैं और फूल हवा में मिलते हैं तो ये कहानियाँ सच सी लगने लगती हैं। वो कहा है कि हर खूबसूरत जगह के पीछे एक कहानी जरूर होती है, यही बताती है हमें वैली ऑफ फ्लावर्स। ये वैली सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत डेलिकेट भी है, इसलिए यहाँ प्लास्टिक और पिक्ट रूल है, क्योंकि कुछ जगहों को सिर्फ एंजॉय नहीं प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि नेचर हमें इतनी खूबसूरती फ्री में देता है, शायद केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए इस वैली को आज भी उतना ही खूबसूरत बनाए रखने की कोशिश चलती है। लेकिन ये वैली सिर्फ देखने के लिए नहीं, यहाँ पर ट्रैक करने का भी अपना एक अलग मजा है। वैली ऑफ फ्लावर्स से जुड़ी हुई और भी बातें हैं जानेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट टाइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाए। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
0: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
4: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की। और आज हमने जाना कितनी खूबसूरत हो सकती है कोई वैली, लेकिन अगर इस वैली की बात की जाए तो यहाँ तक पहुँचना ईजी नहीं, ट्रैक करना पड़ता है इस पूरी वैली तक पहुँचने के लिए। बीच में आते हैं पहाड़ी रास्ते, ठंडी हवा और कभी कभी बारिश, पर शायद यही स्ट्रगल की वजह से जब वैली सामने आती है तो आंखों को यकीन नहीं होता कि कोई वैली वाकई इतनी खूबसूरत हो सकती है जैसे नेचर ने मानो रिवॉर्ड दिया हो। अगर बात की जाए इस वैली की तो वैली ऑफ फ्लावर्स सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये रिमाइंडर है कि दुनिया में अब भी ऐसी जगहें हैं जहाँ नेचर इंसान से ज़्यादा पावरफुल लगता है। वो कहा है कि हर फूल की उम्र छोटी होती है पर उसकी खुशबू याद रह जाती है, बिल्कुल कुछ अफसानों की तरह। अगर कभी ज़िंदगी में बहुत भागदौड़ लगने लगे तो एक बार वैली ऑफ फ्लावर्स ज़रूर जाना। हो सकता है जो सुकून आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपको इस वैली में मिल जाए। सो आज हमने बात की वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में। कल्चर कारवा में आज हमने जाना एक ऐसी जगह के बारे में जो अपनी महक से हमारी जिंदगी को और खूबसूरत बना देती है। कल फिर मिलेंगे एक और जगह, एक और कहानी और एक नई सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट टाइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।

0: केवाईसी अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

कुछ चेहरे फिल्मों में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो एक दौर बन जाते हैं। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

जिंदगी है। और आज का एपिसोड है बेहद खास, क्योंकि आज की शाम डेडिकेटेड है उस एक्ट्रेस को जिनकी सिंप्लिसिटी भी ऑडियंस को पसंद आई, रोमांस भी, इमोशंस भी और ग्लैमर भी। जी हाँ, आज का एपिसोड है अमीषा पटेल स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं उस फिल्म से जहाँ एक तरफ सलमान का स्वैग था और दूसरी तरफ कॉमेडी और इमोशंस का परफेक्ट मिक्स। मैं बात कर रही हूँ ये है जलवा मूवी की।

और अगर इस मूवी के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि इस फिल्म का ओरिजिनल टाइटल फैमिली नंबर वन रखा गया था और फिल्म में एक इंटरेस्टिंग मेटा रेफरेंस भी था, जहां सलमान अनुपम खेर से पूछते हैं कि उनका शो सवाल 10 करोड़ का क्यों बंद हो गया, जो रियल लाइफ में कौन बनेगा करोड़पति का राइवल शो था। और अगर आपने फिल्म ध्यान से देखी हो तो एक पुरानी फैमिली फोटो भी नजर आती है इस मूवी में, लेकिन वो स्पेशली इस फिल्म के लिए क्लिक ही नहीं हुई थी, बल्कि 1982 की फिल्म ये वादा रहा से ली गई थी। और एक और हिडन डिटेल है इस मूवी की, वो ये है कि फिल्म हॉलीवुड मूवी कार्बन कॉपी से इंस्पायर्ड मानी जाती है। साथ ही ये वो वक्त था जब सलमान हेयर ट्रीटमेंट फेज में थे और इस फिल्म में उनका ओरिजिनल हेयर लुक लास्ट टाइम ऑडियंस को देखने को मिला। तो चलिए, इस मूवी की इतनी बात हो ही रही है तो सुनते हैं इस मूवी से ओ जाने जिगर गाना। और इस गाने के बाद बात होगी एक ऐसी फिल्म की जिसने एक नहीं दो स्टार्स को ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया, जिसका एक डांस स्टेप आज भी लोग रिक्रिएट करते हैं। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, तब तक के लिए ये गाना आपके लिए। हाँ।

0: सुन भाई सुरेंद्र।
1: हाँ भाई सुरेंद्र।
0: मैं घर का छोटा हूँ, जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
1: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपको हिंट दिया था कि एक ऐसी फिल्म के बारे में बात होगी जहाँ पर एक नहीं दो स्टार्स को ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया गया, वो मूवी और कोई नहीं कहो ना प्यार है।

और इस मूवी की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक फिनोमिनन था। और इस मूवी का सबसे आइकॉनिक मोमेंट था एक पल का जीना है गाना में, क्योंकि ये गाना पहले से कोरियोग्राफी नहीं किया गया था। शूट के वक्त ही ऋतिक रोशन और फराह ने मिलकर क्रिएट किया था। और इस मूवी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म में राज की मदर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस जो थी वो रियल लाइफ में अमीषा पटेल की एक्चुअल मदर थी। और साथ ही साथ अगर इनिशियली लीड रोल की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि सबसे पहले करीना कपूर कास्ट हुई थी इस मूवी के लिए, लेकिन कास्टिंग के दौरान इनकी आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इन्होंने फिल्म छोड़ दी। फिर एंट्री हुई अमीषा पटेल की, जो कि बाद में ओवरनाइट स्टार बन गई। इतना ही नहीं, एक ट्रैफिक सिग्नल वाला आइकॉनिक सीन आता है जहां राज और सोनिया पहली बार मिलते हैं। वो एक्चुअली में ऋतिक रोशन की रियल लाइफ लव स्टोरी से इंस्पायर्ड था। और इस फिल्म की सक्सेस की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं रही। ये मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी कि डायरेक्टर राकेश रोशन को अंडरवर्ल्ड थ्रेट्स तक फेस करने पड़े। तो चलिए, इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है तो सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में कहो ना प्यार है गाना। और इस गाने के बाद बात होगी एक ऐसी फिल्म की जिसके डायलॉग्स भी आइकॉनिक बने, सॉन्ग्स भी, और एक हैंड पंप ने तो हिस्ट्री ही क्रिएट कर दी। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
5: अरे आगे भी बोलना।
4: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
4: कामयाब हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।

0: म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप।
1: मैं हूं पलक आपके साथ। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या आपको कभी इतना गुस्सा आया है कि आपने गुस्से में एक हैंड पंप भी उखाड़ दिया हो? जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं ये सवाल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अब जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उस मूवी में ये सीन हम सभी ने देखा है, और वो मूवी और कोई नहीं गदर एक प्रेम कथा है।
2: ये छोटी सी जिंदगी तेरा का लंबिया लंबिया तो घर आजा परदेसी।
1: ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये इमोशंस पैट्रियोटिज्म और सेक्रीफाइस का कॉम्बिनेशन थी। और इस मूवी में ऑथेंटिसिटी इतनी इम्पोर्टेंट थी कि शूटिंग के लिए दिल्ली रेलवे म्यूजियम से रियल स्टीम इंजन हायर किया गया इस मूवी को रियल टच देने के लिए। और ये फिल्म लगान के साथ सेम डे पर रिलीज करी गई थी, और लोगों को ये लगा था कि ये क्लैश रिस्की हो सकता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इन दोनों फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और अगर हम तारा सिंह की बात करें यानी कि सनी देओल की बात करें, तो हैंडपंप वाला सीन ओरिजिनल एक दूसरी फिल्म के एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर्ड था, लेकिन बाद में वही सीन तारा सिंह यानी कि सनी देओल की आइडेंटिटी बन गया। और इस फिल्म की रियल इंस्पिरेशन बूटा सिंह और जेनाब की ट्रू स्टोरी थी, जहां पार्टीशन के वक्त एक सिख सोल्जर को एक दूसरे देश की लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन रियल स्टोरी की एंडिंग उतनी हैप्पी नहीं थी जितनी फिल्म में दिखाई गई। अब इस फिल्म की इतनी बात हो ही रही है, तो चलिए सुनते हैं इस मूवी से ये गाना, मैं निकला ओ गड्डी लेके। और इस गाने के बाद बात होगी अमीषा पटेल की एक बिल्कुल डिफरेंट रोल की, जहां ऑडियंस ने उन्हें पहली बार ग्रे शेड में देखा। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, स्टे ट्यून्ड।

उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, ओ उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जाते अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाओ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन हम?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे सुनो
0: बाय।
1: मीठे लस्सी तो पीता।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: हेलमेट और सीट बेल्ट पुलिस के लिए नहीं अपने आप के लिए और अपनों के लिए पहने। फोन को साइड पर रखें, रोड पर फोकस करें।

89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपको हिंट दिया था कि अमीषा पटेल को देखा गया पहली बार ग्रे शेड में, और वो मूवी थी शॉर्टकट रोमियो।

और अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये फिल्म अमीषा पटेल के करियर के लिए काफी डिफरेंट थी, क्योंकि इस फिल्म में पहली बार उन्होंने एक ग्रे शेडेड कैरेक्टर प्ले किया था और उन्होंने खुद कहा था कि ये रोल मेंटली और इमोशनली काफी एग्जॉस्टिंग था। और इंटरेस्टिंग बात इस मूवी की ये है कि फिल्म डायरेक्टर की खुद की तमिल हिट फिल्म थी जो कि हिंदी रीमेक की गई, और साथ ही साथ मोनिका के रोल के लिए पहले विपाशा बासु और दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया गया था, लेकिन इवेंचुअली ये रोल अमीषा पटेल को मिला। अगेन डेस्टिनी का खेल। तो चलिए, इस फिल्म की इतनी बात हो ही गई है तो सुनते हैं इस मूवी का खाली सलाम दुआ गाना। और इसी खूबसूरत गाने के साथ अब वक्त हो चला है मेरे जाने का। उम्मीद करती हूँ आज का ये अमीषा पटेल स्पेशल एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीकेंड कुछ नए गानों और उनके पीछे छुपी कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक म्यूजिक को फील करते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, किसी की बातें उसकी सबसे आसान हेल्प है, तो आज से ही सुनो पर जज मत करो।
2: दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन।
3: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
0: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
4: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
6: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
1: अरे आगे भी बोलना।
0: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आप तक पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: जॉनी जॉनी,
1: यस पापा।
0: बाइक चलाना है?
1: यस पापा।
0: हेलमेट पहनना है?
1: ओके पापा।
0: हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे?
1: नो पापा।
0: यू आर वेरी गुड बच्चा। हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

को चीरते हुए पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 FM की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM को।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, फोन साइड रखो और बातों पर ध्यान दो, क्योंकि आपकी प्रेजेंस भी किसी का सपोर्ट है।
2: तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, अननोन लिंक्स पर क्लिक करने से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो आज से वेरीफाई करके ही लिंक्स और फाइल्स ओपन करें, बिकॉज वन क्लिक चेंजेस योर होल लाइफ।

0: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
0: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो बातें हम नॉर्मल जिंदगी में कह नहीं पाते वो हम किसी नज्म में लिख देते हैं, किसी कविता में लिख देते हैं। और शायद इसीलिए हर कविता सिर्फ लिखी नहीं बल्कि महसूस की जाती है। तो आज दिल शायराना में बहुत सारी बातें होने वाली हैं। मेरे साथ काफी सारे जो कवि हैं वो मौजूद हैं, कवित्री मौजूद हैं मेरे साथ। अनिका जी हैं, आलोक जी हैं, स्मिता सिंह चौहान जी हैं, स्वाति जी हैं और जय सिंह जीत जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: जी तो सबसे पहला सवाल मेरा सभी से है, ये सवाल है कि लिखना जो था वो आपकी चॉइस था या जरूरत है? और
6: मजबूरी
4: क्यों? बट
6: बिकॉज हर एक शायर शायरी शौक से नहीं लिखता, बजाय इसके कि वो किसी से वो अपनी बातें कहे, वो लिखना ज्यादा जरूरी समझता है। तो वो मजबूरी धीरे धीरे उसका शौक बन जाती है, और जब मजबूरी शौक में बदलती है तभी बड़ा शायर बनता है।
4: क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात कह दी आपने। अनिका जी आपसे भी इस सवाल का जवाब मैं

0: कवि का ना एक अलग मूड होता है लिखने का, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है, स्मिता जी आपसे ही पूछते हैं ये सवाल, ये जो इमोशंस हैं ये कहाँ से पैदा होते हैं?
1: इमोशंस तो पैदा कैसे होंगे, आप देखेंगे जी कि अगर मेरे तो इमोशन ऐसे भी पैदा हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने हाल ही में कविता चिड़िया पे लिखी थी, मैं उसे दाना ही दे रही थी, पर मैं ये सोच रही थी कि कई लोग देते होंगे दाना, पर मेरे कवि मन में ये आया कि ये दाना जो है ना मेरा उस पर कोई एहसान नहीं है, ये मेरे झिझक है जो जंगल में काट के हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं उसकी शायद कहीं झिझक कोई शर्मिंदगी मैं मिटाना चाह रही हूँ और इसलिए मैं इसे देती हूँ। तो उसी पर वो एक इमोशन आया और मैं लिखने बैठी और बन गई कविता। ऐसे ही जैसे अभी मदर्स डे था तो 80s 90s की जो माएं हैं जो अपनी बात कभी कह ही नहीं पाती थी उन्होंने सबसे ज्यादा सहा है, ठीक है। तो अभी मेरी माँ बहरीन से आई थी, आपको पता है वहाँ क्या चल रहा है इस वक्त युद्ध का, तो वो बहरीन से आई तो मैं उन्हें देख रही थी क्योंकि वो एक ट्रॉमा में थी। तो जब मैंने उन्हें देखी तो मुझे लगा कि इनका जो अंदर का जो ट्रॉमा युद्ध को देख के पैदा हुआ ना वो सिर्फ वो नहीं था, वो उनकी वो कहानी भी है जो पिछली रह गई, क्योंकि वो उसी चीज पे कह रही थी कि हमने क्या देखा, हमने कुछ नहीं देखा और अब हम ये भी देख रहे हैं। तो वहां से इमोशन आ गया। इमोशन को आप बांध नहीं सकते, वो एक ऐसा समंदर है आपके अंदर, वो कहीं से भी आप पे उफन सकता है, कहीं से भी सुनामी ला सकता है। तो मेरे लिए तो इमोशन यही है
0: जी। क्या बात है सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे एक सवाल है। हम अगर बात करें हमारे हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि जो रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जो समाज को आईना दिखाने का काम किया करते थे, तो क्या लगता है आज के समय जो कविताएं लिखी जा रही हैं समाज को आईना दिखा रही हैं?
2: जी, आज की कविताएं आज के हिसाब से आईना दिखा रही हैं, और उस वक्त जो परिस्थितियां थी प्रेमचंद जी के समय में उन्होंने उन परिस्थितियों को यथार्थ बनाकर

0: अनीता जी आपके पास आती हूँ। स्टेज पोइट्री का एक अलग ही प्रेशर होता है और आप मंच की कवित्री हैं, तो आप बहुत ही बखूबी ये बात जानती हैं, जहाँ लोग सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि रिएक्ट भी करते हैं, अपने इमोशंस भी दिखाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो इफेक्ट हुई हो, आप जो सोच कर गई हो एग्जैक्ट वो परफॉर्म ना कर पाई हो? ऐसा
1: अक्सर हर बार यही होता है।
0: अच्छा, हर बार होता है,
1: सबके साथ होता होगा शायद। हम अपने अंदर से कुछ पैरामीटर्स लेके चलते हैं कि हम ये पढ़ेंगे। पब्लिक डिपेंड करता है कि आप यूथ के जेंजी हैं तो क्या हमें प्रस्तुत करना है, आप थोड़े बुजुर्ग हैं, शायराना मतलब प्रॉपर उस्ताद लोग हैं, तो हम क्या करेंगे उर्दू मुशायरे में, तो वो डिपेंड पब्लिक पर ही करता है कि आप कैसे सुन रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले भी लोग पढ़ रहे होते हैं
0: जी,
1: उतना भी जजमेंट हो जाता है कि वो लोग कैसे सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: अगर नहीं तो फिर चेंज करते हैं सेम टाइम पर लेकर, तो हम एक्स्ट्रा ही जाते हैं
0: जी। जी आलोक यादव जशनूर जी आपके पास आती हूँ और एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। बात करेंगे जॉन इलिया साहब के बारे में, बिकॉज आजकल तो लोग मुझे लगता है कि जो पोइट्री के दीवाने नहीं है वो भी जानते हैं, बिकॉज जॉन इलिया साहब को इतना ज्यादा इंस्टाग्राम पर लोग सुन रहे हैं, जिनको समझ नहीं आता इनफैक्ट वो भी सुन रहे हैं, तो खैर अच्छी बात है ये। पर जॉन इलिया साहब जो बिना किसी फिल्टर के लिखा करते थे, आपको क्या लगता है आज के जमाने में भी जो कवि हैं वो बिना फिल्टर के लिख रहे हैं या कहीं ना कहीं फिल्टर आ गए हैं पोएट्री में भी?
2: जी, ये मेरे हिसाब से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एंड मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे नोन है वो, जो कि विदाउट एनी फिल्टर्स लिख रहे हैं।
0: ओके,
2: एंड करंट सिचुएशन मैं अगर डिस्कस करना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि उन लोगों का जो बोलने का तरीका है, जो भी उनकी परफॉर्मेंस रहती है, लाइक एक नाम है अनंत गुप्ता करके हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जब स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो सीरियसली ऐसा लगता है कि उनकी वाणी में, बोलने में, उनके एक प्रवाह जो उनका चलता है बोलने का, उसमें कोई भी किसी भी तरह का फिल्टर नहीं है। कुछ लोग रखते हैं जिन्हें मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे अपनी मर्यादा में बोलना है, जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरे वर्ड्स किसी को हर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे लोग फिल्टर लगा सकते हैं, बट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है।
0: एग्जैक्टली मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप कैसे डिसाइड करते हैं, क्या आपको पब्लिक को सुनाना है, क्या उनसे छिपाना है?
2: मैं कभी कोई भी चीज कभी सोच के नहीं लिखता, मैं अपने इंस्टिंक्ट्स पर काम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो हमेशा उस चीज के लिए तैयार होके ही लिख रहा हूँ कि मैं किसी को भी ये चीज सुना सकता हूँ किसी भी मंच पर।

0: स्वाति जी आपके पास आते हैं। देखो मुझे नाम याद हो गया है
1: बहुत अच्छा
0: जी। एक वक्त था जब शायरी सिर्फ महसूस की जाती थी, अब रिकॉर्ड भी होती है, इनफेक्ट वायरल भी होती है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने पोएट्री को ज्यादा पावरफुल बनाया है या कहीं ना कहीं पोएट्री और ये लिटरेचर पीछे छूट गया है इसके वजह से?
1: बिल्कुल नहीं। पहले नंबर तो सोशल मीडिया के जरिए आज जहाँ नहीं जाना चाहिए पोएट्री वहाँ तक पहुँच रही है। हम गांव तक भी इसको ले जा रहे हैं। जो पोएट्री शब्द है उसको कोई जानता नहीं था गांव में, आज गांव में भी जो है वो सुनना चाह रहे हैं
0: जी।
1: और पोएट्री एक ऐसा माध्यम है जिससे मतलब समाज में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है, उसको भी ले जाया जा रहा है। तो मैं तो पोएट्री को ये मानती हूँ कि बहुत अच्छा है। जो पहले था वो भी अच्छा था उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से जो है वो भी अच्छा है
0: जी। स्मिता जी
1: जी,
0: बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, तो आपके हिसाब से एक अच्छी कविता की पहचान क्या होती है?
2: मेरे हिसाब से देखिए कविता अच्छी बुरी तो नहीं होती, कविता कविता होती है। और जहाँ तक कनेक्शन का सवाल है कि हम लोगों से कनेक्ट आप तब हो पाते हैं जब आप बहुत सरल साधारण तरीके से अपनी बात को कह पाते हैं, जिसमें दूसरा ये समझे कि अरे ये तो मेरा ही दर्द था जो उसने बोल दिया, है ना। लेकिन बहुत क्लिष्ट अगर आप शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा ऐसा कि जैसे आजकल एक जो आपने भी सोशल मीडिया वाली बात की कि सोशल मीडिया में ना एक होड़ लगी हुई है कि हम कैसे किससे आगे जाना चाहते हैं उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन हम जाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी तकनीक को जब बीच में डाल रहे हैं। ये चीज मैं इसलिए यहाँ पे बोल सकती हूँ क्योंकि अभी कुछ नए नए पोएट भी मैंने देखे हैं जहाँ चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो गया।
0: मैं यही बोलने वाली थी exactly.
2: तो वो जब आते हैं ना तो आप वो कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज
0: exactly.
2: तकनीक आपके भाव नहीं ला पाएंगे, तकनीकी चीजें सरलता नहीं ला पाएंगी तो वो कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जो लोग वाकई लिख रहे हैं, लिखते हैं, चाहे वो चार लाइनें लिखें, दो लाइनें लिखें, पर वो जब भी बोलेंगे ना तो वो कनेक्ट होगा और होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं होते
0: जी। सर आपके पास आना चाहूंगी। जय सिंह जी, अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे इस बारे में कि आपको लिखने से पहले एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कविताओं की बात कहूँ, अगर जैसे मैं बात करती हूँ सिंगिंग की या किसी और अदर आर्ट की, तो वहाँ लोग अपना मेंटोर चुनते हैं, उनसे सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कविता के क्षेत्र में ये चीज उतनी नहीं है, उतना मेंटोर नहीं है, वो सिखाने वाले नहीं है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप?
3: जब कोई फील्ड में आता है इसमें कविता के फील्ड में तो हो सकता है कि वो बगैर किसी गुरु के आ जाए।
0: हाँ।
3: लेकिन यदि आने के बाद वो गुरु को ढूंढ कर लिखता तो बहुत अच्छा लिखता।
0: हाँ।
2: क्या बात है?
3: वो एक बहर में चल सकता है।
0: हाँ।
3: एक पूरी परंपरा में चल सकता।
0: हाँ,
3: है।
0: हाँ, हाँ,
3: और मेरे हिसाब से हमें गुरु तो बनाना चाहिए ताकि हम अपने इमोशंस को भली भांति पेश कर सके।
0: जैसे आपने बात की बहर की, आजकल लोग मोस्टली मीटर में नहीं लिख रहे हैं, छंद मुक्ति लिखते हैं, तो क्या लगता है? मीटर है उसका भी? अच्छा, जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक कवि से पूछा था, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने कहा जो मीटर में ना हो उसे आप ख्याल कह सकते हैं, आप उसे, हाँ, आप उसे गजल नहीं कह सकते।
2: गजल नहीं।
0: तो ये जो लिख रहे हैं लोग इस तरीके का जो कंटेंट है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
3: मैं ये मानता हूँ, मान लिया इमोशंस अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा आए हुए किसी विषय के ऊपर, उस वक्त वो मीटर की तरफ जाएगा तो इमोशंस या तो खत्म हो जाएंगे या आधे हो जाएंगे,
0: बंद जाएंगे।
3: लेकिन अगर हमें एक्सपीरियंस है मीटर्स का तो हम मतलब अपनी बात को ढंग से कह भी सकते हैं, ऐसा भी मुनासिब है, मुश्किल भी नहीं है
0: जी जी।
3: लेकिन उसके लिए एक एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है
0: जी जी। तो किन किन कवियों को पढ़ सकते हैं जो हमारी यंग जनरेशन है? बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी ऐसे ना लिखा जाए, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ के आए। तो कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिनको आप रिकमेंड करना चाहेंगे?
3: डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हैं,
0: हाँ जी,
3: सुनील जोगी हैं, गजेंद्र चौहान है, और बहुत ऐसे और भी कवि लिखते हैं, और जैसे कुमार विश्वास जी हैं
0: जी,
2: तो उनकी तो बात ही अलग है,
3: और सबीना अदीब जी हैं, बहुत गहरा लिखती हैं। जो जितना ज्यादा सुनेगा गीत जी वो उतना अच्छा लिखेगा, मैं ये मानता हूँ।
2: सुनना पढ़ना जरूरी,
1: सुनना पढ़ना बहुत जरूरी है।
0: अनिका जी, आपसे भी यही सवाल है, एग्जैक्ट सेम सवाल ही है, अगर आज की यंग जनरेशन पोएट्री लिखना स्टार्ट कर रही है तो उन्हें सबसे पहले क्या चीजें सीखनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
2: कि ख्याल तो कुछ भी हो सकता है किसी का, और जैसे कि बहर पैरामीटर की बात चल रही थी, तो पानी जब बिना मर्यादा के है तो कैसा है? मर्यादा मर्यादित है बहर पैरामीटर, आप जब मर्यादा में बहते हैं, नल के थ्रू जा रहा है तो
4: सुविधाजनक है, बिना उसके बाढ़ भी ला सकते हैं शब्द, तो पैरामीटर तो पहले इसलिए भी जरूरी है। और पढ़ने के लिए कुछ भी भाव आपकी जिंदगी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हम मैं दर्द लिखती हूँ, कुछ मोहब्बत लिखते हैं, कुछ कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आप अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ें, अच्छे अच्छे जो भी आपसे आप साथ जैसे अभी हम जुड़े हैं, आपसे सीखने को मिलेगा, बड़े लोगों से सीखने को मिलता है, सबकी संगत में रहें। किस हर किसी राइटर को पढ़ना और सुनना ज्यादा जरूरी है आपको एक अच्छी चीज करने के लिए।
0: जी जी,
4: बहुत जरूरी है। आप जब तक जैसे कि जॉन इलिया की बात की आपने, जॉन इलिया, प्रवीण शाकिर जी, शबीना अदीब जी, अंजुम रहबर जी, बड़े बड़े नाम, कुमार विश्वास, जैसे मैं तो फैन हूँ, बिग फैन ऑफ कुमार विश्वास, उनकी वजह से ही आज मैं लिख रही हूँ शायद। तो ऐसे नामों को आपको जरूरी है, जैसे कोई पूछता है कि क्यों लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस वो शायरी सुन ली थी उनके, उसके बाद लगा यही करना है। तो वो नाम जरूरी है और पैरामीटर बहुत जरूरी है।

0: जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं आज दिल शायराना को, वो सोच रहे होंगे कि मेन मुद्दे पर आ जाए, इतने सारे जब कवि और कवित्री जुड़े हैं तो उनकी रचनाएं ना हो तो ऐसा तो नहीं होगा। तो अब हम सीधा रचनाओं पे बढ़ते हैं, तो सबसे ये सेम सवाल है आपसे शुरुआत करते हैं अनिका
1: जी, बताएं मैम
0: क्या ज्यादा पसंद है, ओपन माइक या मंच की तालियां या अकेले कमरे में बैठी हुई एक सच्ची लाइन?
1: सच्ची लाइन को ही मंच पे ले जा रही हूँ मैम। पहले अकेले में लिखती हूँ और फिर मंच तक जाना मुझे उसके लिए अच्छा लगता है।
0: एक कवि जो होते हैं अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा के
1: बात कही मैम आपने, आपको अकेले कमरे में लिखना पसंद है या फिर सबके सामने ले जाना? तो अकेले कमरे में लिख के सामने ले जाना।
0: तो क्या ऐसा लिखा था जिसमें बहुत तालियां मिली हो और बहुत
1: मैम तालियां मिली? वो तो अभी थोड़े दिन के लिए गुप्त रख रही हूँ।
0: अच्छा,
1: वो वायरल भी गया आपको बताया भी।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: तो
0: अभी यहाँ भी गुप्त रखेंगे हम। हाँ, कोई बात नहीं, हम किसी और रचना पर आते हैं।
1: हाँ, तो फिर मैंने एक मतलब धोखे पर ही लिखा था मैम, मतलब दो शेर।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: अर्ज है। मैं इश्क कर रही थी ईमान की तरह, वो इश्क कर रहा था एहसान की तरह। जो कलमे के मानी तक जानता नहीं, जो कलमे के मानी तक जानता नहीं, मैं उसको पढ़ रही थी कुरान की तरह।
0: क्या बात है, बहुत
1: एक नज्म की तरह थी मेरी ये जिंदगी।
0: हाँ।
1: और जिंदगी में गम थे उनवान की तरह।
2: क्या मिस्रा,
1: और छुआ था ख्वाब में उसने एक दफा मुझे, छुआ था ख्वाब में उसने एक दफा मुझे, अब तक महक रही हूँ मैं लोबान की तरह।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आलोक जी आपके पास आते हैं, आपसे भी ये सेम सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको?
2: मुझे, मैं जिस विधा में लिखता हूँ वो अक्सर यही इश्क मोहब्बत प्यार या कह सकते हैं मन वसीयत। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ये भी बोला था कि मजबूरी है, और फिर मैम ने उसको इतनी अच्छी तरह क्लैरिफाई किया ये बात मैम की, जो मैं बहुत अच्छी लगी, वहाँ से मैं यहाँ से मैं उस चीज को लेके जाऊंगा अपने साथ और अपना नजरिया बदलने की कोशिश करूंगा मैं।
0: बहुत बढ़िया। तो क्या आपको एग्जैक्टली क्या ज्यादा पसंद है, ओपन माइक की तालियां या सच्ची लाइन अकेले कमरे में बैठी?
2: मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे सामने बैठे हुए जो लोग हैं वो एक अच्छे श्रोता हूँ, वो उन्हें सुनना आता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वक्ता जब माइक पर कुछ भी बोल रहा होता है तो उसके सामने जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं उसकी परफॉर्मेंस में।
0: एग्जैक्टली, हम बहुत अच्छे श्रोता हैं और हम वेट कर रहे हैं आपकी रचना का कि जल्दी से कोई रचना आए हमारे सामने और हमारे लिसनर्स के।
2: आपने जो तालियों की बात करी थी, ये एक ऐसा ख्याल है, मुझे बहर की जानकारी नहीं है, मैं हमेशा बहर से बाहर ही लिखता हूँ।
0: अच्छा जी।
2: और ये एक ऐसा ख्याल है जिसपे मैंने जो सोचा था वो मैं एक बार कर चुका हूँ कि टोटल ऑडियंस वॉज साइलेंट। मैं अर्ज करता हूँ, मैं ऐसे सबको खुश रख रहा हूँ जैसे मैं खुद खुश रहना भूल रहा हूँ। मुझे इल्म नहीं है किसी की बेरुखी का, मैं तो खुद की बेरुखी से मर रहा हूँ।
3: क्या बात है, क्या ख्याल है, बहुत बढ़िया।
2: तेरी गोद में सर रख कर फिर कभी रोऊंगा माँ, फिलहाल मैं तुझसे सच बोलने को तड़प रहा हूँ।
3: क्या बात है।
2: मंसूबे गलत नहीं थे मेरे, मैं किसी को समझा नहीं पाया, इसीलिए आज खुद को खुद से अलग कर रहा हूँ।
3: क्या बात, अच्छा अच्छा।
2: खुद को उलझा लिया है मैंने पहेलियों में, अब सुलझने के लिए दिल तार तार कर रहा हूँ। मुझसे प्यार करने वालों मुझे माफ कर देना, मैं आखिरी दफा आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ।
3: क्या बात है,
2: आखिरी शेर है कि नहीं रहा दम कि अब एक कदम और भी चल सकूं, ऐ जिंदगी मैं अपनी लाश को इधर से उधर कर रहा हूँ।
0: क्या बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लग रहा है इसको सुन के कि आपने ऐसा कुछ अपने से इंस्पायर्ड होके ये चीज लिखी है, ऐसा कुछ?
2: यस एग्जैक्टली।
0: ओके स्वाति जी, आपके पास आते हैं, क्या ज्यादा पसंद है आपको, ओपन माइक की तालियां या अकेले कमरे में बैठी कुछ बढ़िया सी लाइन?
4: हम सब कवियों का ये है कि हम एकांत जब होते हैं ना, तो हमारे पास भावनाओं का एक श्रृंखला बनते जाता है जिसे हम शब्द देते हैं। और जब हम वो शब्द देते हैं ना तो हमें लगता है कि कोई सुने और सुनने के बाद उसको सार्थक कर दे, बस हमारी इतनी ही तृप्ति रहती
0: है। जैसे सर ने कहा था, बात चाहिए बस हमें, कुछ नहीं चाहिए। हाँ,
4: हमें उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस हम जो अपने भावनाएं रात रात भर कभी कभी महीनों महीनों हम जाके एक रचना पूरी कर पाते हैं, और जब हम चाहते हैं ना कि इसे कोई सुने ना, तो बस उसको सुन के वो सार्थक कर दे। हाँ, बस इतनी सी इच्छा हमारे पास रहती है, तो बस
0: हम वाह करने के लिए तैयार हैं।
4: बिल्कुल तो मैं ज्यादा संघर्ष लिखती हूँ और मेरा भी अभी मतलब मैं बैठ तो सीख रही हूँ, लेकिन मुक्तक मेरा एक है, सुनिएगा। क्योंकि हम घर से दूर रहते हैं, प्रॉपर मैं बिहार से हूँ और यहाँ मैं छात्र हूँ, और कोई भी हो, छात्र हो, कोई भी अपने घर से दूर रह रहा है ना, तो एक वो संघर्ष कर रहा है।
0: बिल्कुल।
4: और उसे पता होता है कि एक दिन वो कुछ भी कर ले, उसे घर की तरफ लौटना ही है। तो उसी पे रचनाएं थी।

0: बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर के लिए जो बात कही ना आपने आखिर में कि हम सब भले ही भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार हमें अपने घर ही लौटना है। और मैंने
1: शाश्वत सच है,
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने किसी एक बहुत ही खूबसूरत शायर की कुछ ऐसी लाइन पढ़ी थी, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, अगर अपने शहर जो होते तो घर चले
1: जाते।

0: अमिता जी आपके पास आते हैं जी, आपसे भी यही सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको?
1: देखिए, हर कवि या शायर जो भी हैं, सबको एकांत ही पसंद होता है. जो तालियों वाला माहौल है, वाहवाही वाला माहौल है, वो तो 2020 के बाद शुरू हुआ. लिखते लोग 2020 से पहले भी थे.
0: हाँ जी,
1: ये अच्छी बात है कि डिजिटली ये चीज आई और लोगों को, कई लोगों को पहचान मिली. हाँ, कई लोगों को उनका जो एकांत का लिखा हुआ है वो लोगों के सामने आया. लेकिन अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे तो मुझे वाहवाही और तालियों से ज्यादा ये चाहिए होता है कि वाह स्मिता तूने क्या लिखा. वो मुझे बहुत, मतलब कुछ ऐसा लिख दो कि आपको लगे कि हाँ आपने कुछ ना अपने मन को संतुष्ट किया, तो वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है. ओपन मिक में भी हम जाते हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा है कि कुछ चलन ऐसा हो गया है, क्योंकि कोई चीज जब अधिकता में हो जाती है ना तो उसकी वैल्यू गिर जाती है. अब ऐसे अधिकता हो गई है कि वहाँ श्रोता नहीं होते हैं.
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वहाँ सिर्फ कवि होते हैं. सबको जल्दी है कि हम अपना बोलें, एक दिन के चार चार ओपन मिक हो रहे हैं, तो उसमें ना कोई किसी को सुनता है, ना कोई किसी को परखता है, ना कोई किसी को कुछ बताता है कि भाई तुम अपने को ऐसे इम्प्रूव कर लो या ऐसे कर लो. तो मैं इसीलिए ओपन मिक बहुत कम जाती हूँ. मैं एक दिन का, जिस दिन जाऊंगी महीने में दो जाती हूँ, और आराम से सुन के आती हूँ 15-20 लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि सुनना बहुत जरूरी
0: है
1: ना. कहना तो सबको आता है, कहते हैं कि लिखना कितना अच्छा है ये जरूरी नहीं है, आपको सुना किसने वो ज्यादा जरूरी है, है ना. आप लिख सकते हैं. तो अभी मैंने ना माँ पे, मैं आपको बता रही थी कुछ देर पहले कि मैंने अपनी माँ पे लिखी थी.
0: हाँ जी.
1: तो ये मन के भाव है जो उन्हें देख के आए थे.
0: हाँ जी.
1: और ये 80s और 90s की माओ को समर्पित है.

0: प्रचार रखा। अब जब ऐसी माओं से ना हम बेटियां जो आज बाहर निकल पाई हैं उनके सहने की वजह से, तो हम क्या सीखते, बस दो लाइन है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कि मैं

0: का कुछ सच भी बचा रहा है, अपने हिस्से का दरिया भी बचा रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत रचना है आपकी। सीरियसली ऐसे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मुझे लगता है माँ दुनिया की एक ऐसी चीज है जो सुकून देती है, है ना
0: जी।
1: तो मैं बहुत अच्छा नहीं लिखती मैं, लेकिन हाँ मैं पढ़ती बहुत अच्छा हूँ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कवियों को, बहुत अच्छे अच्छे शायरों को पढ़ा है, मजाज, फराज, फैज साहब, जॉनी लिया साहब, गालिब, तो बहुत कुछ मैंने सीखा है उनकी रचनाओं से। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिख लेती हूँ। वैसे ही माँ के लिए लिखा था कि बहुत कुछ मिलता है जिंदगी में, पर है माँ तेरे आंचल जैसी खिली जन्नत नहीं मिलती।
0: बहुत खूबसूरत।
1: सर आपके पास आते हैं, आपसे ये सवाल है, आपको क्या ज्यादा पसंद है?
2: मुझे ये पसंद है हमने कोई चीज मान ली एकांत में लिखी हो, जो देश दुनिया से उठाई हो, उस पे अगर हमें वाह मिले तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मंच हो चाहे ओपन माइक हो।
0: बिल्कुल,
2: ऐसी ही एक रचना मैं आपके सामने अगर इजाजत हो।
1: बिल्कुल सर।
2: एक पहले मुक्त है, फिर एक गजल आपके बीच। मुक्त क्यों कहे ताजगी है हताशा नहीं है, जिंदगी है निराशा नहीं है, ये दिलो जान है शायरों की, शायरी है तमाशा नहीं।
0: क्या बात।
2: और एक गजल है, वैसे तो वो तरन्नुम में बहर में है, लेकिन मैं वैसे बहर में पढ़ता हूँ।
1: जी जी।
2: हमें नफरतों को मिटाना पड़ेगा, अमन चैन से दिल लगाना पड़ेगा, वो जिसने हमारे सभी ख्वाब लूटे उसे माफ करके दिखाना पड़ेगा।
1: क्या, क्या, क्या बात है।
2: कि नफरत हमेशा अंधेरा करेगी, चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा।
1: क्या बात है।
2: बड़ी मजहबों की दीवारें खड़ी है, उन्हें उल्फतों से गिराना पड़ेगा। और बेटियों के लिए शेर देख लें, सबक हौसलों का सिखा कर पढ़ा कर हमें बेटियों को बचाना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
2: और गजल का मक्ता यूं के अगर चाहता है रहे प्यार जिंदा, तुझे जीत कर हार जाना पड़ेगा।
1: क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।

0: तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके, लेकिन समय सीमा का ख्याल रखते हुए अब हमें शो की समाप्ति पर आना पड़ेगा। तो जाते जाते सबसे फिर एक और सवाल, सबसे ये सवाल कि कविता क्या है आपके लिए? अनिका जी आपसे पूछना चाहूंगी,
1: कविता क्या है? कविता माँ के लिए बनाया हुआ एक अच्छा खाना है जिसे बच्चों के आगे परोसा जाए तो वो तारीफ करें।
0: हाँ।
1: भक्त के लिए भक्ति है और मेरे जैसों के लिए तो आज की कह सकते हैं आप कि हम जो लिख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, बस कि भगवान है हमारा, अगर उसे आप जैसे लोग सुन रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, तो सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास लिखने के अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि रिश्ते नाते सब एक अलग चीज है, आपके पास जब आपकी कला है ना तो वो अलग चीज है
0: जी।
1: अगर वो सब होते तो शायद हम ये लिखते ही नहीं, हम लोगों के साथ अच्छे होते
0: जी।
1: जब कोई नहीं बचा, सब खोने के बाद ये मिली, तो ये तो सब कुछ ही है अभी फिलहाल, बाकी ज्यादा बेहतर जानते होंगे।
0: तो जाते जाते कोई और आपकी चंद लाइन जो आप यहाँ पर रखना चाहती
1: हैं? हाँ मैम जरूर, तो चार लाइनों का एक किताब रख देती हूँ मैम, उस इंसान के लिए जिसकी वजह से आज मैं लिख रही हूँ।
0: अरे हाँ जी जी।
1: कर के वादा मुकर गए तुम भी, बे इरादा मुकर गए तुम भी, जितनी उम्मीद थी मुझे तुमसे, जितनी उम्मीद थी मुझे तुमसे, उससे ज्यादा मुकर गए तुम भी।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया।
0: क्या बात है, वो सुन रहे होंगे वैसे ही। हो सकता है।
1: बिल्कुल आज सुने
0: जी। आलोक जी आपके पास आते हैं, क्या है कविता आपके लिए?
2: अभी जो मैंने जवाब दिया था इस बात का, वो बदल जाएगा।
0: हाँ
2: बेबी अगली बार मुझसे सवाल,
0: वैसे अभी भी बदल सकता है,
2: अभी आप चाहें। इसलिए नहीं कि जो मैंने जवाब दिया था कि शायरी मेरी मजबूरी है, वो मैं माशूका बनाऊंगा और उसका कारण मैं ढूंढूंगा, क्योंकि बिना कारण के किसी बात का जवाब देना मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ठीक होगा, क्योंकि अपनी ही बात में फंसना मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: तो चलिए अगली बार आपसे फिर मिलेंगे और ये जो जवाब है उसका हमें इंतजार रहेगा। तो जाते जाते आपकी कुछ और कोई रचना, कुछ लाइन?
2: जी मैं चार लाइनें पेश
0: करता हूं। बिल्कुल।
2: मेरी आंखों की गुलाबी नसें चीख रही थी, मेरी खाल से कोई मेरे रोंगटे खींच रहा था, मेरे आंसुओं को बहने की इजाजत नहीं थी, मुझे क्या बोलना था और मैं क्या बोल रहा था।
0: क्या बात है,
2: बहुत शुक्रिया।
0: क्या बात है स्वाति जी,
3: बिल्कुल।
0: क्या है कविता आपके लिए?
3: कविता मेरे लिए साधना है। हम कोई चीज को मतलब साधना में बदल देते हैं ना, तो हम जितना साधना करेंगे उसके करीब और जाएंगे।
0: मैं कहने वाली थी हंसी आपके लिए, क्योंकि जब से आप आई हैं और आपको कवि, वो कविता के नाम से जो स्माइल आ रही है आपके चेहरे पर।
3: मैं सोच रही थी कि क्या बोलूं
0: जी,
3: तो मेरे लिए साधना ही है
0: जी, जी।
3: मैं जब भी बैठती हूँ कुछ लिखने तो वो एक साधना ही है, माँ भगवती की कृपा होती है तभी हम कुछ रच पाते हैं।
0: क्या बात है।
3: तो
0: कुछ कहना चाहेंगी और जाते हुए आप?
3: हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमें गिराते हैं, हम उठते हैं, कोई गिराने की कोशिश करता है, तो चार पंक्तियाँ उसी पे लिखी थी
0: जी जी।
3: गिराओ मुझे तुम किस हद तक गिरा सकते हो, गिराओ मुझे तुम किस हद तक गिरा सकते हो, खुद को सही मुझे कितना गलत बता सकते हो। आसमान खुला है जमी की गोद खाली है, आसमान खुला है जमी की गोद खाली है, एक इंसान की खातिर कितना पत्थर बिछा सकते हो, एक इंसान की खातिर कितना पत्थर बिछा सकते हो। बहुत शुक्रिया।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।

0: श्वेता जी आपके पास आते हैं जी, आप क्या कहेंगी, क्या है आपके लिए कविता?
1: मेरे लिए तो कविता जो है ना इस पूरी धरा का सबसे खूबसूरत राग है। वो राग जिसे जो अनसुने होते हैं ना वो कभी हृदय सुन लेते हैं। कभी शायद कहा गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वो अनसुने राग जो हम दुनिया को सुनाते हैं ना वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो अभी जैसे स्वाति ने बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिराते हैं और फिर हम उठते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए कुछ ऐसा लिखा था, चार लाइनें सुना देती हूं, बस लंबी है कविता बट चार लाइनें, कि एक चींटी का रास्ता भी रोकते हैं व्यर्थ बैठे लोग, और आप सोचते हैं कि ये लोग तुम्हें बढ़ाएंगे, जो खुद चल नहीं पाए कभी वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, राहों पर कांटे बोने वाली फितरत हो जिनकी वो तुम्हारे सपनों के लिए क्या कालीन बिछाएंगे, और जो भावनाओं की ऊंचाई छू नहीं पाए कभी वो दूसरों के आसमान नापते हैं, जो उड़ने का हौसला भी जुटा नहीं पाए कभी वो तुम्हारे पंखों की थकान मापते हैं, बढ़ने की बात ना किया करो इनसे, बढ़ने की बात ना किया करो इनसे, ये तुम्हें गिराने का साजो सामान मापते हैं, ये तुम्हें गिराने का साजो सामान मापते हैं, इनकी दुनिया छोटी है इनसे उलझना ठीक नहीं, इनकी दुनिया छोटी है इनसे उलझना ठीक नहीं, ये वो धुंधले आईने हैं तुम्हारी शख्सियत का उन्मान मापते हैं, तुम्हारी शख्सियत का उन्मान मापते हैं।
0: बहुत प्यारा। चार लोग तो नहीं है
1: क्योंकि जिसने मेहनत की होती है ना, और मेरा एक मानना है कि जो चीजों को लेके बहुत, जिनको हुनर होता है किसी भी चीज का, संगीत का, कविता रचने का, किसी भी चीज का, वो कभी किसी दूसरे का ना उन्मान नहीं माप सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि कितनी मेहनत करके अगर मैं यहाँ तक पहुंचो तो उसने कितनी मेहनत की होगी। तो निंदा रस वहाँ नहीं होता कहीं, जहाँ हुनर होता है वो वहाँ होता है जहाँ व्यर्थ बैठे रहते हैं लोग।
0: एग्जैक्टली। सर आपके पास आते हैं जयसिंह जी, तो आपके लिए कविता क्या है?
2: कविता कवि का एक ऐसा संदेश है जिसे वो एक बार लिख कर अनंत श्रोताओं और पाठकों तक पहुंचा सकता है।
0: हाँ जी,
2: बस मेरी नजर में यही कविता है।
0: तो जाते जाते आपकी कुछ और लाइंस,
2: एक मुक्तक मैं सबके बीच रखता हूँ, एक आदर्श मुक्तक है। न होकर रंग बूतो गुल सिता में कुछ नहीं होता, मोहब्बत के बिना ऊंचे मकाम में कुछ नहीं होता, बहुत रंगीन है दुनिया बड़ी दिलकश नजारे हैं, मगर माँ बाप से बढ़कर जहाँ में कुछ नहीं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आप सभी से बात करके मुझे बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों को रेडियो महारानी के स्टूडियो में आकर उतना ही मजा आया होगा, ये तो आप खुद बताएंगे जब आप इस शो को सुनेंगे। तो सबसे मैंने पूछ लिया है कविता क्या है, तो मैंने जैसे कहा मैं थोड़ा बहुत लिख पाती हूँ। जब शुरुआत में कभी लिखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या लिखूं, क्योंकि बहुत नई थी लिखने में, कविताओं के लिए ही कागजों के लिए लिखा था और पूछा था कि क्या लिखूं मैं, मुझे तुम ही बता दो ना। तो मैंने लिखा था कि कह दूं तुझसे सदियों की कहानी या चंद लम्हों का इतिहास लिखूं, ऐ कोरे कागज तू ही बता आज क्या खास लिखूं।
3: अरे
0: तो बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो वेरी मच आप मेरे साथ जुड़े।
1: थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा
0: जी,
1: बहुत ही प्यारा लगा हमें
0: जी
1: यहाँ सो करके
0: जी। तो वक्त बदलता रहेगा लेकिन जो कविताएं हैं, जो नज़में हैं, जो हमारा लिटरेचर है वो ऐसे ही जिंदा रहेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और लिसनर्स आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके। सपना हूँ मैं आपके साथ और ले आई हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप मैं और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। वैसे आज मैं जिस स्टार की बात करने जा रही हूँ, उनके लिखे हुए गानों ने हिंदी सिनेमा के चांद को भी चमक दी। कुछ ऐसी जान डाल दी उन गानों में कि हर गाना कुछ कहने को बेताब हो उठा। वैसे तो प्रोफेशनली ये एक मैकेनिक थे और दिल्ली से बॉम्बे, जिसे आजकल हम मुंबई के नाम से जानते हैं, पैसे कमाने आए थे। पर साहित्य से इतना ज्यादा लगाव था और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब से ये इतने ज्यादा इंस्पायर्ड थे कि सीधा पहुंच गए सिनेमा के मंच तक। तब से लेकर अब तक इन्होंने सिनेमा को हर जॉनरे के गाने दिए हैं। बच्चों से तो इतना ज्यादा लगाव था इन्हें कि इनके लिखे हुए गीत स्कूल की प्रेयर बन जाया करती थी। और लकड़ी की काठी का तो क्या ही कहना भाई, बच्चों का जो देश होता है ना, उसका तो ये नेशनल एंथम बन चुका है। वैसे आज मेरा प्रॉमिस आपसे ये है कि जो आज का दो घंटे का सफर हमारा और आपका है, ये बहुत ही शायराना रहने वाला है। और ये भी बता दूं आपको कि आज मैं स्टूडियो में बिल्कुल भी अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद रहेंगे, तो मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और ऐसी आवाज आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सफर को। लेकिन जब बात शायरी की हो और गीतों की हो, तो गानों से बेटर क्या हो सकता है आज की शुरुआत के लिए। तो शुरू करते हैं इस सफर को कुछ म्यूजिकल स्टाइल में।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जब HR

जिंदगी फॉर्मूला बन जाती तो बहुत बोर हो जाती, पर इसकी खूबसूरती तो यही है कि जिंदगी का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये जो पंक्तियां अभी मैंने पढ़ी, ये मेरी लिखी हुई तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि है आज के हमारे स्टार की, यानी कि संपूर्ण सिंह कालरा जी की। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये भला कौन है, तो सब्र कीजिए, बताती हूँ मैं आपको कि ये कालरा साहब कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने गुलजार साहब हैं, जिन्हें इनके ओरिजिनल नेम यानी कि संपूर्ण सिंह कालरा के नाम से कोई भी नहीं जानता, हर कोई सिर्फ गुलजार का ही तो दीवाना है। इनका जन्म 18 अगस्त 1934 में हुआ। ये सिर्फ एक उर्दू पोएट ही नहीं बल्कि एक लिरिसिस्ट, ऑथर, स्क्रीन राइटर और एक फिल्म डायरेक्टर भी हैं। चलिए इससे पहले कि मैं आगे इनके बारे में आपको बताऊं, इनके नाम के पीछे जो मिस्ट्री है ना उसे सुलझा लेते हैं, और साथ ही आपको बताऊंगी कि इनके नाम में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनका जन्म हुआ था दीना गांव में, और वहां से पार्टीशन के बाद जब ये दिल्ली आए अपने पिताजी के साथ, तो यहां पर उन्होंने अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पर क्योंकि ये पढ़ने के बहुत शौकीन थे, इसलिए रात को ये तिलस्मी कहानियां लेकर आते थे और 3-4 कहानियां एक ही रात में पढ़ देते थे, और अगले दिन जाकर दुकानदार को वो बुक्स वापस करके नई किताबें लेकर आते थे। अब एक दिन दुकानदार ना जाने किस बात पर इतने नाराज थे कि उन्होंने इन्हें एक मोटी सी बुक दे दी कि ये पकड़ो, ये वाली बुक पढ़ो। ये थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहब की पोइट्री बुक गार्डनर, विच वॉज अ ट्रांसलेटेड बुक ऑफ कोर्स। और इन्हें जब ये बुक मिली तो ये बच्चा इतना खुश हो गया और इसने पूरी शिद्दत से उस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया, और यहीं से सफर शुरू हुआ साहित्य की तरफ इनका। और इसी साहित्य ने इन्हें एक और भाषा से भी मिलवाया, ये भाषा थी बंगाली, क्योंकि ट्रांसलेटेड बुक में भी

कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनको ट्रांसलेट नहीं किया गया था। उन्हें जानने की इच्छा में इन्होंने बंगाली लैंग्वेज भी सीखी और इसी लैंग्वेज और साहित्य ने आगे चलकर इन्हें एक नया तोहफा दिया। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी से इंस्पायर्ड इन्होंने जब शायरी करना शुरू की तो इन्हें अपना नाम बदलना था, क्योंकि हर आर्टिस्ट का एक पेन नेम होता है, और क्योंकि ये मिर्जा गालिब को भी काफी ज्यादा पसंद करते थे तो इन्होंने उनसे इंस्पायर्ड गुलजार शब्द का चयन किया और साथ ही अपने नाम के आगे ये दीनवी भी लगाने लगे थे। ये अलग बात है कि लंबे सफर में दीनवी कहीं पीछे छूट गया और सिर्फ गुलजार आगे रह गया।

0: कुछ पुरानी यादें, पुराने किरदार, आज के जमाने के लिए यादगार।
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: जिंदगी कैसी है पहेली।
0: वो एक कल जब बीते थे अपनों के संग कुछ पल।
3: एक दूसरे से करते हैं प्यार हम।
0: जब इशारों में होती थी बातें, इंतजार में कटती थी।

0: सुनिए सिनेमा के कुछ यादगार रंग अपनों के संग, शो रात बाकी बात बाकी में सपना के संग।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।
0: शनिवार और रविवार रात 8 से 10, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आज के सिनेरियो में तो वो बिल्कुल फिट बैठता है। गाना है पैसा ये पैसा हाय पैसा कैसा पैसा, भाई पैसे के लिए तो लोग बिछड़ जाते हैं, ऐसा ही कुछ हमारे गुलजार साहब के साथ भी हुआ। उन्हें अपने परिवार को छोड़कर मुंबई जाना पड़ा पैसा कमाने के लिए, और क्योंकि वो मैकेनिक थे इसलिए उन्हें वहां जाकर गाड़ियों को रंगने का काम मिल गया। पर जब तक गाड़ियों का रंग सूखता था, ये अपनी शायरी का रंग कागजों पर उतार दिया करते थे। और ऐसे ही चलते चलते इन्हें एक एसोसिएशन के बारे में पता चला। एसोसिएशन थी PWA यानी कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जिसको इन्होंने तुरंत ही ज्वाइन कर लिया। और वहीं इनकी मुलाकात हुई लिरिसिस्ट शैलेंद्र साहब से, जो 1962 में डायरेक्टर बिमल रॉय की एक फिल्म के लिए गाने लिख रहे थे और इन्हीं गानों को कंपोज कर रहे थे हमारे SD बर्मन साहब। पर एक गाने को लेकर शैलेंद्र और SD बर्मन साहब में कुछ खिटपिट हो गई, जिसकी वजह से शैलेंद्र ने गाने को लिखने से साफ इनकार कर दिया। पर हाँ, साथ ही उन्होंने गुलजार को SD बर्मन साहब के आगे इंट्रोड्यूस किया। पर फिल्म डायरेक्टर बिमल दा बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस बात से, और वो गुलजार को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि बंदनी फिल्म जिसे वो डायरेक्ट कर रहे थे वो एक बंगाली नॉवल पर बेस्ड फिल्म थी। इसलिए बिमल रॉय चाहते थे कि कोई ऐसा शख्स इस फिल्म के गीतों को लिखे जिसकी राइटिंग में बंगाली टच हो। और जब उनकी किसी बात का जवाब हमारे गुलजार साहब ने बंगाली में दिया, तब कहीं जाकर उन्हें गुलजार साहब पर कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने इस गाने को उनके हाथों में सौंप दिया। गाना बनकर तैयार हो गया, सबको बहुत पसंद आया, फिल्म हिट हो गई 1963 में, और साथ ही इस गाने को भी बहुत ज्यादा प्यार लोगों ने दिया। ये गाना था मेरा गोरा रंग ले लो मोहे शाम रंग दे दो, और इस गाने को लोगों ने भर भर के प्यार दिया। पर गीत के हिट होने के साथ ही गुलजार साहब ने एक अनाउंसमेंट भी कर दी कि आज के बाद वो कोई भी गाना नहीं लिखेंगे। भाई ऐसा क्या हुआ कि गाना हिट होने के बाद भी उन्होंने ऐसी अनाउंसमेंट की, ये भी आपको बताऊंगी। फिलहाल थोड़े से गीत सुन ही लेते हैं, उसके बाद आकर इस मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे। और ये गीत है गुलजार साहब का ही लिखा हुआ, जिसे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय पर पिक्चराइज किया गया था। AR रहमान साहब का म्यूजिक है और गाने के बोल हैं तेरे बिना बेसुआदी रतियां।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
0: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89

चार फिल्म तक बना रहा। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके अंदर एक कलाकार छुपा हो तो वो कलाकार कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। ऐसा ही गुलजार साहब के साथ भी हुआ। अब उन्होंने फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखना स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें आनंद, इजाजत और रात पश्मीने की का नाम शामिल है। उसके बाद इन्होंने एज डायरेक्टर अपने करियर की पहली फिल्म डायरेक्ट की थी, जिसका नाम था परिचय। और इस फिल्म में संजीव कुमार और विनोद खन्ना की गेस्ट अपीयरेंस थी, पर मेन लीड में थे जितेंद्र साहब। और इसी फिल्म से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक पकड़ बनाई थी। न केवल जितेंद्र बल्कि कोशिश फिल्म से संजीव कुमार साहब के लिए भी इन्होंने कई दरवाजे खोल दिए थे। और इसी फिल्म के लिए संजीव कुमार को नेशनल अवार्ड भी मिला था। वैसे ये बता दूं मैं आपको कि इस फिल्म में जया भादुरी जी ने भी काम किया था और इन दोनों ने डेफ एंड डम का किरदार निभाया था, जिसकी वजह से ये फिल्म अलग ही सुर्खियां बटोर रही थी। पर अपने आइडल मिर्जा गालिब पर काम करना इनका बहुत बड़ा सपना था, पर फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें ऐसा कोई चेहरा नहीं मिल रहा था जिसे ये मिर्जा गालिब की तरह इंट्रोड्यूस कर सकते। तभी इन्हें किसी ने एक खत लिखा और उसमें लिखा था कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं होने वाला हूँ आपका मिर्जा गालिब। कौन था ये शख्स, इसके बारे में भी बताऊंगी, पर फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक आप सभी का इंतजार कर रहा है।

सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का रखो ख्याल। साइबर क्राइम में हैकिंग, फिशिंग और साइबर स्टॉकिंग से हो जाओ सावधान। डू योर पार्ट, बी साइबर स्मार्ट।

0: एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचैनियां पाल ली, एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचैनियां पाल ली। और लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। सपना हूँ मैं आपके साथ। और आज रात बाकी बात बाकी में हम गुलजार साहब की बात कर रहे हैं। आज हम इतने बड़े शख्स की बात कर रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे किसी को इनवाइट कर लेना चाहिए। आज स्टूडियो में मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और इनका नाम है पार्थ। तो पार्थ, आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
1: नमस्ते सपना जी, आज मैं गुलजार साहब की आवाज में आपको उन्हीं की एक कविता सुनाने वाला हूँ।
0: इरशाद।
1: तुझे पहचानूंगा कैसे, तुझे तो कभी देखा ही नहीं। ढूंढा करता हूँ तुझे अपने ही चेहरे में कहीं।
0: क्या बात।
1: लोग कहते हैं

0: होगा, तूने मन्नत के लिए कान छिदाया होगा। सामने दांतों के एक वक्फा है, तेरे भी होगा, एक चक्कर तेरे पांव तले भी होगा।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: ना जाने किस जल्दी में थी, जन्म दिया और दौड़ गई। ना जाने किस जल्दी में थी, जन्म दिया और दौड़ गई। क्या खुदा देख लिया था जो मुझे छोड़ गई।
1: क्या बात
0: तुझे पहचानूंगा कैसे, तुझे तो कभी देखा ही नहीं, तुझे तो कभी देखा ही नहीं।
1: बहुत खूब। आपने इतने प्यारे अंदाज में आज गुलजार साहब को हमारे सामने यहाँ रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पार्थ, बेसिकली चलिए हम थोड़ा सा आपके बारे में भी जान लेते हैं, क्या करते हैं आप?
2: तो मैम, मैं पेशे से, वैसे तो मैं अभी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ के साथ ही एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को ओन करता हूँ, जिसमें मैं तरह तरह की वीडियो रिक्वायरमेंट्स और वीडियो एडिटिंग वगैरह इस सब का भी काम करता हूँ।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आप भी मल्टी टैलेंटेड हैं हमारे गुलजार साहब की तरह। और एक क्वालिटी तो आपने बताई नहीं कि आप भी इतनी प्यारी शायरी करते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। और ऐसी ही बहुत सारी शायरी आपसे सुनते रहेंगे, क्योंकि गुलजार साहब ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था, इसलिए वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस किया करते थे और अपनी राइटिंग में हमेशा उनके इमोशंस को शामिल किया करते थे। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कि कौन थे वो शख्स जिन्होंने खत लिखकर साहब को कहा था कि इंतजार कीजिएगा मेरा, मैं होने वाला हूँ आपका मिर्जा गालिब। ये कोई और नहीं बल्कि नसीरुद्दीन शाह थे, जो उस वक्त FTII में अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे थे, जब उन्हें पता चला कि गुलजार अपने एक टीवी सीरियल मिर्जा गालिब के लिए एक चेहरा ढूंढ रहे हैं। तो नसीरुद्दीन को लगा कि मैं ही हो सकता हूँ वो, मेरे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने तुरंत ही गुलजार को एक खत लिखा। अब ये अलग बात है कि ये खत कभी भी गुलजार तक पहुँचा ही नहीं, पर नसीरुद्दीन शाह की इतनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन थी कि आखिर में वही बने मिर्जा गालिब का चेहरा।

0: जहाँ जिंदगी है वहाँ हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुँचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

सारे शहर में आप सा कोई नहीं। वैसे आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, पूरे जहान में उन जैसा कोई नहीं। हम बात कर रहे हैं गुलजार साहब की, और आज मेरे

0: बंद आंखों से रोज चला जाता हूँ सरद पार में मिलने मेहंदी हसन से। सुना है उनकी आवाज को चोट लगी है, सुना है उनकी आवाज को चोट लगी है और गजल खामोश है सामने बैठी हुई। कांप रहे हैं होंठ गजल के, लेकिन उन आंखों का लहजा बदला नहीं। जब कहते हैं सूख गए फूल किताबों में, यार फराज भी बिछड़ गए, अब शायद मिलेंगे ख्वाबों में, अब शायद मिलेंगे ख्वाबों में।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये बात तो सच है कि वो हमेशा से ही फराज साहब और मेहंदी हसन साहब से मिलना चाहते थे, पर उनका ये सपना पूरा ना हो सका और उनकी मुलाकात से पहले ही मेहंदी हसन साहब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। खैर, इन दो लोगों के अलावा दो और ऐसे लोग थे जो उनके बहुत ज्यादा फेवरेट थे। एक थी उनकी बिटिया जिन्हें वो प्यार से बॉस्की कहा करते थे, और एक थी उनकी वाइफ राखी जी जिनसे वो बे इंतहा प्यार करते थे। पर ये शादी का रिश्ता करीबन 1.5 साल ही चला और बिटिया के जन्म के बाद ये दोनों अलग हो गए। पर बॉस्की की याद में इन्होंने इतनी सारी कहानियां लिखी, जैसे बॉस्की का पंचतंत्र, बॉस्की के कप्तान चाचा, बॉस्की का कौआ नमा, बॉस्की की गिनती, बॉस्की की गप्पे, बॉस्की के धनवान, ऐसे ना जाने कितनी सारी कहानियां लिखी हैं। और साथ ही वो प्रेयर आपको याद है जो बचपन में आप अपने स्कूल में पढ़ा करते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये भी तो गुलजार साहब की कलम से निकली हुई एक प्रेयर है जो हम लोगों ने बचपन में दिल खोल कर गाई है। कई बच्चे आंखें बंद करके तो कई चोरी छुपे आंखें खोल कर भी इसे गाते थे। और वो वाला गाना जो नेशनल एंथम बन चुका था हम सब बच्चों का, लकड़ी की काठी, जी हाँ, ये गाना जिसे उर्मिला मतोंडकर पर फिल्माया गया था, इस गाने को भी हम सब ने कितना प्यार दिया। ये सभी गाने, ये सभी कहानियाँ सिर्फ गुलजार साहब की कलम से ही पॉसिबल हो पाई, क्योंकि वो बच्चों से बे इंतहा प्यार किया करते थे। वैसे प्यार की बात अगर है तो इनकी कलम से ना जाने कितने ऐसे गीत लिखे गए हैं जिन्होंने कई जनरेशन तक लोगों को सच्चा प्यार करना सिखाया।

0: एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या बात है। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सदियों के लिए अपना एक अलग ही इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं अपने लिसनर्स पर। ऐसे ही एक राइटर जिनके आज हम बात कर रहे हैं, ही इज नन अदर देन गुलजार साहब। और मेरे साथ भी एक छोटे से गुलजार साहब बैठे हैं। खैर, ये कहना तो बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए, लेकिन पार्थ, अब आप हमें गुलजार साहब की कौन सी लाइन सुनाने वाले हैं?
1: कभी तो चौंक के देखे कोई हमारी तरफ, कभी तो चौंक के देखे कोई हमारी तरफ, किसी की आंख में हमको भी इंतजार दिखे।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। थैंक यू सो मच पार्थ, आपने हमें सच में गुलजार साहब की इतनी खूबसूरत शायरियां सुनाई कि हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो हमारे बीच आज स्टूडियो में मौजूद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ तो वो रूबरू बैठे हैं और उनसे डायरेक्ट मैं ये शायरी सुन रही हूँ।
1: शुक्रिया।
0: बहुत बहुत बढ़िया। चलिए तो वापस चलते हैं हम अपने ओरिजिनल गुलजार साहब की ओर, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री ने इतना प्यार दिया। उनके पहले ही गाने से उन्हें भर भर के इंडस्ट्री से अटेंशन मिलने लगा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर वक्त उन्हें ये प्रेफरेंस दी जाती थी। बहुत सारे गानों के लिए उन्हें रिजेक्शंस भी फेस करनी पड़ी। जैसे उनका एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जिसे लेकर आरडी बर्मन साहब के साथ उनकी थोड़ी सी तूतू मैमे हो चुकी थी। पंचम दा इस बात पर गुस्सा हुए कि वो कुछ भी लिख कर ला रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गाना बन जाएगा। ऐसे शब्द मेरे नहीं बल्कि पंचम दा ने कहे थे गुलजार साहब से, जब वो एक पेपर पर कुछ लाइंस लिखकर लेकर गए और उन लाइंस को पढ़कर पंचम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वो पेपर साइड रख दिया। तभी आशा जी ने वो पेपर उठाया और अचानक ही वो उन लाइंस को गुनगुनाने लगी और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये गाना बनकर तैयार हो गया। ये गाना था इजाजत फिल्म का, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। और आज भी जब हम इस पर्टिकुलर गाने को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी ही लाइफ से जुड़ा हुआ ये किस्सा है। खैर, ये सिर्फ एक गीत ऐसा नहीं था जिसे रिजेक्शन मिली हो, बल्कि बहुत सारे गीत ऐसे थे जिसे इंडस्ट्री में रिजेक्शन फेस करनी पड़ी। इनमें से एक गाना था लकड़ी की काठी, जिसे शेखर कपूर ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि गुलजार साहब, मैंने आपसे बच्चों के लिए गाना मांगा था, लेकिन ये आपने क्या लिख दिया, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, ये क्या गाना है। लेकिन जब फिल्म की एक्ट्रेस शबाना आजमी का सपोर्ट मिला इस गाने को, तब कहीं जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। ऐसा एक और भी गाना था, 1983 में रिलीज हुई फिल्म जंगल बुक का टाइटल ट्रैक था, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था इस बेसिस पर कि डायरेक्टर साहब को चड्डी पहन के फूल खिला ये वाली लाइन पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने गुलजार साहब से कहा कि हम ये गाना तो आपसे ले लेंगे, लेकिन आप इस लाइन को बदल दीजिए। पर गुलजार साहब ने कहा, नहीं, ये लाइन्स तो मैं नहीं बदलूंगा। और यकीन मानिए, आज भी ये गाना हमें इसलिए एक्सेप्टेड है क्योंकि इसमें यही वाली लाइन है जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था। वैसे गाना तो आप समझ ही चुके हैं, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। और इसी के साथ वक्त चला है हमारे भी कुछ ट्रैक्स का। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए फिल्म सात खून माफ से इस खूबसूरत से ट्रैक को, जिसको अपनी आवाज दी है उषा उत्थप और रेखा भारद्वाज जी ने। गाना है डार्लिंग और इसके लिरिक्स दिए हैं गुलजार साहब ने।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। वैसे आई एम श्योर हम जहां पर भी होंगे गुलजार साहब के गीत जरूर सुन रहे होंगे, क्योंकि ऐसी वर्सटाइल पर्सनालिटी सदियों में कभी एक बार जन्म लेती है। और आज हम बात कर रहे हैं गुलजार साहब की, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई डिकेड्स तक अपना इम्प्रेशन छोड़ा। इसमें इन्होंने कई म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया, जिसमें आरडी बर्मन साहब का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि हिंदी सिनेमा में इन दोनों की जोड़ी ने कुछ ऐसे गीत दिए हैं जो लोगों को आगे आने वाले भी कई सालों तक याद रहेंगे, जिसमें परिचय, आंधी, खुशबू और इजाजत जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। ना केवल पहले के बल्कि आज की अगर हम बात करें तो आज के भी बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ गुलजार साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि एआर रहमान साहब, जिन्होंने उन्हें मोबाइल यूज करना सिखाया हो, या फिर विशाल भारद्वाज जी, जिन्होंने उन्हें माचिस, मकबूल और ओंकारा जैसी फिल्म के कुछ जादुई गाने लिखने पर मजबूर कर दिया हो। सचिन देव बर्मन साहब हो या फिर मदन मोहन, सलील चौधरी हो या शंकर जयकिशन, हर किसी के साथ गुलजार साहब ने बहुत अच्छा काम किया। अब यहाँ गुलजार साहब की राइटिंग की अगर हम बात करें तो ये त्रिवेणी फॉर्म ऑफ राइटिंग का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये थ्री लाइनर पोएट्री पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। इनकी जो पोएट्री है वो परसेप्शन क्रिएट करती है, यानी कि जब भी आप इनकी पोएट्री सुनते हैं आप इमेजिन करते हैं, आपके आंखों के आगे एक पिक्चर सी फॉर्म हो जाती है। साथ ही इनकी शायरी में एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। इनकी शायरी की टोन जनरली कन्वर्सेशनल होती है, ऐसा लगता है कि सामने बैठकर आपसे रूबरू हो रहे हैं। और इनकी शायरी में हिंदी और उर्दू लैंग्वेजेस का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। वैसे आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत खास बन गया था, क्योंकि हमने बात ही एक खास इंसान की है, और देखते ही देखते ये 2 घंटे कहाँ खत्म हो गए पता ही नहीं चला, और वक्त हो चला है मेरा यहाँ से जाने का। पर इससे पहले कि मैं आप सबसे विदा लूँ, मैं शुक्रिया करना चाहूँगी आज के हमारे गेस्ट पार्थ जी का, जिन्होंने हमें इतनी खूबसूरत कुछ पंक्तियां सुनाई, वो भी गुलजार साहब की। और जाने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका पार्थ, कि आप आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बहुत सारी शायरियां हमें सुनाई। जाते जाते भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें गुलजार साहब की एक शायरी जरूर सुनाएं।
1: थैंक यू सपना जी, आपने मुझे यहाँ पर स्टूडियो में अपने साथ बिठाया, इन्वाइट किया। अब मैं आपको शायरी पढ़ के सुना देता हूँ।
2: किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों के ड्योढ़ी में खड़े कुछ यार मिलते हैं, जिसे हम दिल का वीराना समझकर छोड़ आए थे, जिसे हम दिल का वीराना समझकर छोड़ आए थे, वहां उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जाते जाते इस जूनियर गुलजार साहब को सुनना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। वैसे तो साहब की हर राइटिंग में आपको प्यार, दोस्ती और जिंदगी के ना जाने कितने फलसफों का रस मिलता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आगे भी ये रस हमें मिलता रहे। खैर, आज के दौर से भी वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ओ रोमियो फिल्म में भी उन्होंने मिलने और बिछड़ने की खूबसूरती को अपने कलम से कुछ इस तरह से दिखाया है कि हर कोई उनके लिखावट का एक बार फिर से फैन हो चुका है। और आज ही क्या बल्कि आने वाले ना जाने कितने सालों तक हम उनको उनकी राइटिंग के लिए याद करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है मेरा आपसे विदा लेने का, फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और हाँ, प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। छोड़े जा रही हूँ आपको गुलजार साहब के कुछ खूबसूरत गीतों के साथ, और अगली बार तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच। बोली में थोड़ा रियान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा थी तेरी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
4: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
4: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
5: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
6: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो, हेलो।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारो।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था, अब मैं चली तुम बोलते रहो।
1: सुनो सुनो, हेलो

0: कोरोना के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: क्यों फूलों के खिले खिले
2: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
3: है फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूं।
2: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
4: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
1: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किस पे आएगा।
2: सदा सुरक्षित रहो, अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बाद बाकी में।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

हसरत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है। शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: यहाँ आए किस लिए?
1: आपने बुलाया किस लिए?
0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा।

फस्ट बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल गुमराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े गुमराया मारे गिल गुमराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम।
0: बाजू

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भेजा सरकार।
1: फैनो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: से तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: तुम्हारे नंबर पे?
1: हाँ जी।
0: अच्छा,
1: और उन्होंने पूछा क्या?
0: क्या पूछा?
1: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
0: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
0: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
0: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं, रेंट पे है, EMI पे।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कहानी जानकर जय और वीरू बिना किसी पैसों के डाकुओं के अड्डे पर हमला करते हैं और गब्बर को पकड़कर ठाकुर के हवाले कर देते हैं।
1: सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है गब्बर, तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी हैं।
0: इस लड़ाई में वीरू अपने सबसे अच्छे दोस्त

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
0: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सत्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: एक दिन मानसरोवर से आवाज आ रही थी, राधा राधा राधा, ऐसी आर्त आवाज आ रही थी कि ये मानसरोवर हमारे वृंदावन में ही है। पहले यमुना जी मानसरोवर के उधर से प्रवाहित होती थी वृंदावन की, अब वृंदावन के किनारे से और मानसरोवर उधर हो गया, तो कहते वृंदावन बाहर नहीं, हो वृंदावन ही है, मानसरोवर वृंदावन के अंतर्गत ही है, बंशीवट मानसरोवर ये सब अंतर में ही है। प्रेम में छकी हुई मत वाली परम सावधान चतुर शिरोमणि ललिता जी के कान में आवाज पड़ी। उस सीधे वहां गई, देखा कौन ऐसे आर्त भाव से पुकार रहा है, तो देखा कि बाल खुले हुए हैं और श्रीअंग से ऐसी सौरभ आ रही है जो अनुराग को बढ़ा रही है। बड़ा सुंदर छापेदार लहंगा पहने हुए, तन में सुंदर साड़ी धारण किए हुए हैं, जो स्वर्णिम सितारों से जड़ी हुई है, सुंदर कंचुकी पहने हुए हैं, श्याम रंग है और फूलों से जटित उसके ऊपर ओढ़नी ओढ़े हुई है और अश्रुप प्रवाह हो रहा है और मुख से बोल रहे राधा राधा राधा। ये कौन है जो हमारी स्वामिनी जी का ऐसे आर्त भाव, ध्यान रखना, नारायण बेटे के भाव से पुकारा तो उसी समय हरि पार्षद प्रकट हो गए, तुम राधा राधा बोलोगे श्री जी की सखी सुनकर के उदासीन हो जाएगी, नहीं, जो भगवान को भी आदेश करते हैं वो सखियां तत्काल आपकी तरफ देखेंगी और उनका देख लेना अपने को निहाल कर देना है। एक बार किसी सखी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो लाडली लाल हमारी संपत्ति हो जाएंगे, ध्यान रखना। बड़ी उदार सखियां हमारी स्वामिनी जी की है, रीझ गई देखकर, अरे मेरी स्वामिनी जी का नाम लेके रो रही, ये राधा नाम है ही ऐसा, जिस दिन रंग चढ़ेगा ना राधा तो कैसे वो हृदय की कुछ दशा बदल जाती है, जैसे जैसे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और राधा नाम का प्रभाव पड़ेगा, काफी है, फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए, शब्द याद कर लो, ये ऐसा रंग चढ़ेगा राधा राधा, कुछ राधा नाम कार्यम हनुदिन मिलतम साधना घीस कोटिस, केवल केवल राधा राधा, परम पदवी तुम्हारे चरणों में लौटेगी, सिद्धियां तुम्हारे चरणों में, ये राधा नाम है। ये कौन सखी है जो ऐसी स्वामिनी जी को पुकार रही है, एक अनुपम रूप सखी सुख सागरी तन कोटि अनंग तरंग छवीली नागरी।

उन मोहिलिए बन जंतु बजावे जंत्र को। हाथ में वीणा लिए हुए राधा राधा राधा, बुद्धि थोड़े सब बंद हो जाती चलना।